0: आप जो देते हैं वही पाते हैं। अंग्रेजी में आपने कई बार सुना होगा, यू रीप व्हाट यू सो और व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट। यह एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमें सिखाता है कि हमारे द्वारा दिए गए विचार, भावनाएं और कर्म ही हमें वापस मिलते हैं। जब हम दूसरों के प्रति सकारात्मकता और प्रेम दिखाते हैं तो हमें भी वही वापस मिलता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि हमारे विचार और कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जब हम अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं।
1: श्रोताओं, ये था आज का नीति वचन। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय है 5:55 और आज के इस शुभ दिन में हमारी पहली प्रसारण सभा शुरू होती है। मैं हूं आपके साथ स्टूडियो पर आरजे लूसी और आज की हमारी पहली प्रसारण सभा को आप सभी तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो। हमेशा की तरह आज भी हम इस सभा में पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो इसके साथ आइए हम अपनी पहली प्रसारण सभा की शुरुआत करते हैं और आपको मैं जानकारी दे दूं कि अब से लेकर सुबह के 11 बजे तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। तो सबसे पहले 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 6:10 को आप सुन पाएंगे क्रिश्चियन भजन कार्यक्रम भक्ति के हाबुंग जोशुआ एंड पार्टी की आवाज में। फिर 6:40 को आप सुन पाएंगे कालो भाषा में समाचार। को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे और ठीक उसी के बाद आप सुन पाएंगे 7:10 में आपातानी भाषा में समाचार। आपातानी श्रोताओं के कार्यक्रम के बाद आप सुन पाएंगे 7:15 में मॉर्निंग एंटरटेनमेंट और ठीक उसी के बाद आप सुनेंगे तागिन भाषा में समाचार। 7:40 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सदाबहार और ठीक 8 बजे प्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। श्रोताओं, ठीक उसी के बाद 8:40 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर और 9 बजे प्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। एंड 9:10 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप जहां आप सुनेंगे बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें।

0: 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से जहाँ होती है दिल से दिल की बात।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: श्रोता अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रति वर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव। और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। IPL क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति गीत आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। श्रोता, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे गालो भाषा में समाचार।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर लुचिर पोल चामुंगोला लोकन तार जीते आरोसो को सिरे गालो मिंके नागोम मिलने जीरे मिंके नागोम मिन जिनगो मारवम जीर दो नाबार्ड रीजनल ऑफिस ईटानगर के जनरल मैनेजर कम ऑफिसर इंचार्ज एस वी रंगाराव ईटानगर के लोक भवन लो स्टेट गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केती परनायक नेमरो कारक सिदूला स्टेट सोगो रूरल लाइवलीहुड सिम अदुदो बरग मिंग से ओक फार्मिंग ओक रूरल कम्युनिटीज का दिग पिगो पागो अल्ब पादो बरग मिंग से अबाम पारजुबी सितु ओक कल एग्रीकल्चरल सेक्टर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस कॉटेज ओक विलेज इंडस्ट्रीज आर्टिशियंस ओक रूरल एंटरप्रेनर्स गद्दम आइन मुर्को जिगुर कागुर सेम ऋतु ब्रिचिका माब आलरू ब्रिग तोका अमला ऑफिशियल्स गद्दम गवर्नर भी मेनियर टू सिम अबागा दे सिम आलरू काग तग लप अमला राव भी तोगसिला गवर्नर ने मेन पग जितू कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट लोक सैनिक स्कूल लो एडमिशन पादो पोरी रिलेन स्कूल आउ स्टूडेंट्स गद्दम ईटानगर के लोक भवन लो मरो गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केती पर नायक बिकारक सिला अगोम जाब्रिक जाप्तांग मिन सिदूला सिगी कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट ओक स्टेट के माजिब मजिसी से अगोंगो एमतातु ओक सिम स्टूडेंट गद सिम प्री कोचिंग जिला संब पादरुदोब रिग नाम लगाबे एपीएससी ऑफिसर नंगरम पिंकअप ने गवर्नर कोइक तातु ओक संब पोरीपोता अबासिम दिनचिगला आगेरा नाम अलरूब रिग नाम लगाबे इंडियन आर्मी पर्सनल टीचर्स ओक मेंटर्स गद्दम चीन गवर्नर भी कोई कागुम जिलिक तातु ओक अनाबो टीचर्स मेंटर्स ओक कम्युनिटी लीडर्स गद्द बाकेन दोला संब आउगर ले दूले पर नाम लगा अब दिनची रूप लगी दो अमतातु अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट्स के गोल्डन जुबली एम लोदुम नाम के लोनिना ने आलोलो मरो तिराप डिस्ट्रिक्ट लो लुक इन टू द फ्यूचर अमला अरुणाचल सोगो ट्रांसपोर्ट सिगिम अल्डो ब्रिगमिंग से अबागत दम कागत आगे नाम लगाबे वर्कशॉप रिग कोलो ट्रांसपोर्ट एंड एलाइड मिनिस्टर ओजिंगता सिंगला एडवाइजर ट्रांसपोर्ट चकत अबोबुंजी दूलिक रलिक मिंगतु ओके ट्रांसपोर्ट सर्विस सिम आल्डो रिग मिंग नाम लगाबे नारू अग चेन्नम पानम मधुम मधुम सिगिम लगी दे दो अमला मिनिस्टर भी मेंतातु केई पान्यो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल यजाली लो बीज उत्सव 2026 लो दुम गनम मेरो अलरूब लो चुम गतू कु ओके कम्युनिटी सीट कंजर्वर्स स्कूल आओ निशी ओके अपातानी ट्राइबल काउंसिल ओके दोलो यूट गदिसिम फ्रंटलाइन इकोलॉजिकल स्टेवर्ड ब मोदूला मोकोम काकेंतायन ब अनम लगा ब सीट्स ऑफ होप एमला इकोलॉजिकल ग्रीनिंग इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट वाइड प्रोग्राम को रिगना में मेरो मोकोक जिका ओके एग्रो बायोडाइवर्सिटी रिसोर्स ओके मार्केट लिंकेज सेंटर एम डिस्ट्रिक्ट लो परमानेंट ब दो ब आयन ब मोलुग गर एमला मेंकेन जितातु ओके डिस्ट्रिक्ट लो इंडिजिनियस इकोलॉजिकल नॉलेज सिस्टम सिम नेशनल पॉलिसी लो लालक लादो ब केवीके के पान्योर एम बाकेन दोला एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन MSRF रिगर अमला MSSRF चेयरपर्सन डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन भी मेंकेन जितू अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के गोल्डन जुबली एम तिराप लो लोदुम ग कोलो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी DHS आरालो हेल्थ डिपार्टमेंट मेगा हेल्थ कम प्री आई स्क्रीनिंग कैंप को कौनसा के नेहरू स्टेडियम लो रिगका तनगद नून गलोमें के नगोम सिम आकाशवाणी ईटानगर लोक के तपादु फिफ्थ सीनियर नेशनल टाइकोंडो चैंपियनशिप 2026 रिग ताको सोक लगाब स्टेट टाइकोंडो टीम डार्लेन नाम लगाब सोक ट्रायलम निर्जुली अरुणाचल टाइकोंडो एसोसिएशन हेडक्वार्टर लोमेरो रिगका ओके ट्रायल सो गो चैंपी गो एटलीस्ट आकुम सिला ट्रायल सिम रिकासी न्यातु ओके सोक दारलेन नाम एटलीस्ट गद देश पे पेले लोक रिकासी न्यारे एमताजिदा ईस्यांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस गे ऑपरेशन डाउन 2.0 रिगे को आराल सोगो मेरो ईस्यांग डिस्ट्रिक्ट ओयान दोलू लोक ड्रग्स पुगने लाने निजीर ओमेगो ईस्यांग पुलिस पटेक सिगरला बुक लोक केजी अकेन गो गंजा एम पुलिस गद्दे लारेक न्यातु ओकसिम एनडीपीएस एक आरालो केसम एक गब गेबा एम ताजिदाग ओकसम ब अगेरम दिंची ब रिग नाम लगा ब पुलिस डिपार्टमेंट एम ईस्यांग सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ब कायरूप कोई कागुम जिलेक्तु ईस्यांग डिस्ट्रिक्ट बाकिन पर्टिन जनरल हॉस्पिटल लोपेन अरुणाचल वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन कैंप गोमेरो रिगका सोगो चामनीगोला आंगो यूनिट गोबे ईएम लाकुम तु ओके सिगिम गालो आउ डोनेशन ग्रुप गद्दे रिगन्यातु ओके सिगिम लके लोग जीडब्ल्यूएस लोग जनरल सेक्रेटरी ब दूतोरे लसीए कुन डॉक्टर मिंगलो युग सीध आलो अन्य कन्न पुचुप कुनाम लगा बुने पागलम पाला कैम्सिम रिगन्यातु वेस्यांग डिस्ट्रिक्ट लिरो मोबाइल असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस लगा ऑफिस गारी अलीगो लालिंग नम लिरो मोबाइल एमएलए पर्सिजिलेन बु जंदा का तुम लकेन लो इने लुगो आलोगो इंद्र मोतु ओके एडमिनिस्ट्रेटिव अगेरा नम रिकेन ब रिग नम लगा नारू अबाम पुदो चादो लमोग नम सिगि दिंची रुदो एमला एमएलए बु सिम रिकोग मेंकोग जिदागलो मेंतु ओके सिगी मोकोलो एडमिनिस्ट्रेटिव अगेरा नम रिग मेंग कोलो माजी रिगुर कागु रकुलाप एमला डॉक्टर जुमरी रोमिन बु मकेनागुम मेंतातु के सिरिग गालो मेंकेनागुम एगे
0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे गालो भाषा में समाचार। गालो श्रोताओं का कार्यक्रम जारी रहेगा हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मेगाहर्ट्ज़ यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर। दोस्तों वक्त है आपको पेश करने का अगला कार्यक्रम सुबह सवेरे।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे, जहां हम लेकर आते हैं सेहत, सकारात्मक सोच और बेहतर जीवन से जुड़ी बातें। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में एक चीज बहुत आम हो गई है और वो है गुस्सा। ट्रैफिक में गुस्सा, ऑफिस में गुस्सा, घर में गुस्सा और कभी कभी छोटे छोटे

वाटों पर भी गुस्सा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बार कि आप अगर गुस्सा होते हैं या बहुत ज्यादा गुस्सा, तो हमारी सेहत पर गहरा असर डाल सकती है। आज हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के बारे में। जब दोस्तों हम गुस्सा होते हैं, तब हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, दिल तेज धड़कने लगता है, हमारे मसल्स काफी तान हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगती है। कभी कभी गुस्सा आना बिल्कुल स्वाभाविक है, ये एक सामान्य भावना है, लेकिन अगर गुस्सा बार बार आए या उसे संभालना मुश्किल हो जाए, तो इसका असर हमारे दिल, दिमाग और रिश्तों पर पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड प्रेशर वो दबाव है जो खून हमारी रक्त नालियों की दीवारों पर डालता है। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और लंबे समय तक बना रहता है, तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी हाइपरटेंशन भी। हाई ब्लड प्रेशर का असर को हम अक्सर उसे साइलेंट प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि कई लोगों को इसके लक्षण तुरंत महसूस नहीं होते। गुस्सा और बीपी का संबंध है क्या दोस्तों, वो आपको बता दूं कि सोचिए अगर आप रोज छोटी छोटी बातों पर गुस्सा अगर आपको आए और शरीर बार बार तनाव की स्थिति में जाए, तो दिल और रक्त नालियों पर कितना दबाव पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दवा ही नहीं, बल्कि स्ट्रेस और गुस्से को संभालना भी जरूरी है। तो दोस्तों आइए हम जारी रखेंगे हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये बेहतरीन गीत।

दोस्तों आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम सुबह सवेरे में, जहां आज हम बात कर रहे थे हाई ब्लड प्रेशर और गुस्सा कंट्रोल के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि गुस्से को संभाले कैसे। तो गुस्से आना तो गलत नहीं है, जरूरी बस ये है कि हम उसे कैसे हैंडल करें। कुछ सरल उपाय हैं। जब अगर आपको गुस्सा आए तो तुरंत जवाब देने की जगह कुछ पल रुक जाए, धीरे और गहरी सांस लीजिए। अगर संभव हो तो थोड़ी देर के लिए उस स्थिति से दूर चले जाइए। रोजाना हल्का व्यायाम या मॉर्निंग वॉक कीजिए, पूरी नींद लीजिए। नींद की कमी भी चिड़चिड़ापन बढ़ा सकती है। अपनी बात शांत और स्पष्ट तरीके से रखने की आदत डालिए। बीपी कंट्रोल करने के लिए कुछ आदतें हैं। नमक का सेवन सीमित रखिए। फल और हरी सब्जियां अपने आहार में शामिल कीजिए। नियम शारीरिक गतिविधि रखिए और धूम्रपान और अत्यधिक शराब से दूर रहिए। समय के साथ आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा और इसी के साथ साथ आप अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कीजिए। समय समय पर ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहिए। दोस्तों गुस्सा अक्सर दूसरों को सजा देने के लिए किया जाता है, लेकिन सबसे पहले तो नुकसान हमारे अपना शरीर को ही होता है। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी मुस्कान और थोड़ा सा संयम कभी कभी सबसे बड़ी दवा बन जाता है। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम सुबह सवेरे में एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। जब भी हमें गुस्सा आए उसे समझने की कोशिश करेंगे, उसके पीछे की वजह को पहचानेंगे और अपनी सेहत को प्राथमिकता देंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने दिल को हल्का रखिए, क्योंकि एक शांत मन ही स्वस्थ जीवन की बुनियाद है। मैं हूँ आपके रेडियो साथी आरजे लूसी, आपसे आज्ञा लेती हूँ। फिर मिलेंगे कल हम अगले एपिसोड ऑफ सुबह सवेरे में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। लेकिन दोस्तों जाने से पहले ये आपको बता दूं कि हमारा इस गीतों का सिलसिला जारी रहेगा।

में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। कुछ घटनाएं विज्ञान से जुड़ी हैं, कुछ सामाजिक बदलाव से और कुछ ऐसी है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। तो चलिए आज की सुबह शुरू करते हैं 31 मई के ऐतिहासिक सफर के साथ। दोस्तों 31 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने की थी। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को तंबाकू के नुकसानों के बारे में जागरूक करना। हर साल लाखों लोग तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। रेडियो के माध्यम से हम भी अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे, एक छोटी सी आदत कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। स्वस्थ जीवन के लिए तंबाकू यानी टोबैको से बहुत दूरी जरूरी है। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि सेहत सबसे बड़ी दौलत है। विश्व के कंटेक्स्ट पे हम बात करें तो 31 मई 1959 में लंदन का बिग बेन चालू हुआ था। दोस्तों जब हम लंदन का नाम लेते हैं तो एक तस्वीर जरूर उभर कर आती है, वो है बिग बेन। 31 मई 1859 को लंदन के मशहूर घंटाघर बिग बेन ने पहली बार समय बताना शुरू किया था। आज भी बिग बेन सिर्फ ब्रिटेन का ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचान का प्रतीक माना जाता है। सोचिए एक घड़ी जो लगभग देर सारी से भी ज्यादा समय लोगों को वक्त का एहसास करा रही है। भारत में राष्ट्रीय झंडे से जुड़ी एक याद है, आज के दिन 31 मई को संबंध भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय पहचान की खोज भी जोड़ा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारत को एक ऐसा झंडे की तलाश थी जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके। ये वही दौर था जब राष्ट्रीय एकता और स्वराज की भावना तेजी से बढ़ रही थी। आज हम जब तिरंगे को देखते हैं तो याद आता है कि इसके पीछे एक स्वतंत्रता सेनानियों के सपने और बलिदान जुड़े हुए थे। विज्ञान की दुनिया में भी मई का अंतिम दिन कई महत्वपूर्ण खोजों और प्रयोगों का गवाह रहा है। विज्ञान ने हमें सिखाया है कि जिज्ञासा की प्रगति का पहला कदम है। आज के युवाओं के लिए एक संदेश भी है दोस्तों, सवाल पूछने से कभी घबराइए मत। हर बड़ी खोज एक छोटे सवाल से ही शुरू होती है। दोस्तों आइए इसके साथ कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं, जो है धर्म करम फिल्म से एक दिन बिक जाएगा।

0: श्रोता आप सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग इंटरटेनमेंट। दोस्तों कुछ पलों में आप सुन पाएंगे तागिन भाषा में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर स्टेशन ग सुलु 2026 अनिंग ग येलो पोलो अलो चोम गला लॉक इन ने संडे अरु ग बाज अकन ग चोम गला अंगो मिनि ग बोयनाम सुरु ग गला तागिन प्रोग्राम मको कुइला इन ग बिन ताम गुइन ने सी ताजांग राय मयूग सैटरडे अलोलो ईटानगर लो नाबार रीजनल ऑफिस ग बैंक मैनेजर कम ऑफिसर इंचार्ज बरिन SB रंगाराव अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर चेती परनाय नि लोक बाबन लो कार्क सुपुकुला बिपादुकु ओके सो कार्क सुकु अलो लो स्टेट सो रूरल लाइवलीहुड लो रंगो नंपो मन आजिग लगाब गामागु रोमी सुलारी तुकु ओके गवर्नर बेनाम एग्रीकल्चरल सेक्टर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस कॉटेज ओके ब्लेज इंडस्ट्री आर्टिसन ओके रूरल एंटरप्राइजेस ग रंगो नंपो ओके अदोंग बे मलेने आजिंगा ओगुका अदगाकुगु कामा मोरों लक ओके सी स्टेस सो इकोनॉमिक मोरकोएनगा अलब काइजेब कंट्रीब्यूशन जितुला ऑफिशियल आजिंगा एडवाइज गो जिला रितुको मयुग सैटरडे अलुलो ईटानगर के लोक भवन लो स्टेट के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर चेती परनाय कुरुंगकुम डिस्ट्रिक्ट लोक एमी सैनिक स्कूल लो एडमिशन दब क्वालिफाइड कुनाम स्टूडेंट आजिंगा कारक सुला गामा गु रोमी सुपकुला पिंपाल कुंकुब ओके सो अलुलु गवर्नर APCS ऑफिसर निंगराम पिंकअप ग स्टूडेंट आजिंगा अन्युब प्री कोचिंग पुरी मोनाम हरते के नुला रितुको मयुग सैटरडे अलोलो तिराप डिस्ट्रिक्ट लो अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस ग अन्य चांगुन गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन शोबाम को अलोलो ट्रांसपोर्ट ओक एलाइट मिनिस्टर बरिन ओजिंग ताशिंग ओक ट्रांसपोर्ट एडवाइजर बरिन चाकत आबो बलो डोमिन गला अरुणाचल ट्रांसपोर्ट लो वर्कशॉप गुनी रेमिन ग पुकुला बिपादुकु ओके सो अलोलो मिनिस्टर सोशल मीडिया लो पोस्ट मला बेनाम ग कोचिंग नि ट्रांसपोर्ट सिस्टम सोंग अल मोदु ब नि मनंग नोले आइडिया मंगनाम एक्सपीरियंस ओके इनोवेशन ग जिमि सुदु बरि पला बिपालेन तुकु केलोग प्राइडे अलोलो ईटानगर ग सिविल सेक्रेटरी लो अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा कांडो नेटिव स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लो बिल्डिंग नाम मधुब फाउंडेशन एलिंग दिलिक जिपकोला पिपादुको ओके सोग अलोलो ईटानगर के MLA तेची कासो नाचो MLA नाकप नालो ओके दुमप्री जो MLA रोदेबुई बलुका डोमिन गलारी तुको ओके सकन स्टेट ऑफ द आर्ट फेसिलिटीज स्टेट सो अदग अकु डोंगिनी बापवाले ब रिगद बरी दुकुन ओके इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सी कंट्रोल रूम कम्युनिकेशन सिस्टम कॉन्फ्रेंस हॉल ओके इमरजेंसी ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गो डोंगने पेला सोशल मीडिया लो CM कांडोनमी लपालारी तुको अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस APSTS ग अनिंग चांगुनन गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन सोकु ग अरालो हेल्थ डिपार्टमेंट ओक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी तिराप ग मयुग सैटरडे अलोलो कोनसामोकु ग नेहरू स्टेडियम लो मेगा हेल्थ मेला कम प्री आई स्क्रीनिंग गु ऑर्गेनाइज ला न्यक ओगुंगा चेकअप लारी ग पकुला बिपादुकु ओक सोंग तिराप डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर बरेन

नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कार्यक्रम सदाबहार में। मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे लूसी। रात के सुबह के सुहाने महफिल में हम लेकर आए हैं अरुणाचल प्रदेश के मौसम विशेष, ताकि आप अपने दिन की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं राजधानी ईटानगर और पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट के मौसम से। 31 मई को ईटानगर और पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में आसमान ज्यादातर बादलों से घिरा रहने की संभावना है। दिन के समय अधिक तापमान लगभग 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि रात को तापमान 22 टू 23 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की या मध्यम बारिश भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप सुबह जल्दी सफर पर निकलने वाले हैं तो छाता या रेनकोट साथ रखना न भूलें। अरुणाचल का मौसम क्योंकि कभी भी फिल्मी प्लॉट ट्विस्ट की तरह अचानक बदल जाती है। तवांग डिस्ट्रिक्ट में रात और सुबह के समय ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। बादल छाए रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। जो लोग तवांग साइट सफर कर रहे हैं उन्हें पहाड़ी सड़कों पर सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। वेस्ट कमेंग के बोमडिला और दिरांग के आसपास के इलाकों में बादलों का आना जाना बना रह सकता है। दिन के समय हल्का गरज चमक वाला मौसम भी देखने को मिल सकता है। सुबह और रात के समय हल्का ठंड का एहसास बना रहेगा। ईस्ट कमेंग, सेप्पा और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने और रुक रुक के बारिश होने की संभावना है। गांव और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग को फिसलन भरी सड़कों पर सावधानी बरतना चाहिए। लैंडस्लाइड्स की संभावना हो सकती है। पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट में अधिकतर बादलों भरा मौसम रहने की संभावना है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ लेते हैं छोटा सा इस गीतों का ब्रेक। उसके बाद जारी रहेगा ये हमारा वेदर अपडेट्स, जहां हम अरुणाचल के सारे डिस्ट्रिक्ट के वेदर रिपोर्ट्स आपको पेश करेंगे।

दोस्तों सदाबहार में हम बात कर रहे थे वेदर रिपोर्ट्स के बारे में, तो कुरुंगो में क्रादादी इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में प्री मानसून एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। बादल

बादल, हल्की बारिश और कुछ इलाकों में थंडर स्टॉर्म की संभावना है। लोअर सुबनसिरी और अपर सुबनसिरी, जीरो वैली और दापोरिजो के आसपास बादलों का प्रभाव बना रह सकता है। दिन के दूसरे हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। जीरो की ठंडी हवाएं और हरियाली मौसम को और भी खूबसूरत बना सकती है। कामला डिस्ट्रिक्ट में हल्के माध्यम से बारिश वाला मौसम रह सकता है। रात के समय नमी बढ़ने की संभावना है। मेचुका और आसपास के शियोमी डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ी इलाकों में बादल और ठंडी हवाएं बनी रह सकती है। कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना भी है। आलो, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, लेपरादा और लोअर सियांग में बादलों के साथ बारिश की भी संभावना है। IMD ने पिछले कुछ दिनों में इस बेल्ट में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी थी। सियांग और अपर सियांग, इंक्योंग सियांग वैली के कई इलाकों में बादलों के साथ गरज चमक की स्थिति बनी रह सकती है। पहाड़ी नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को मौसम अपडेट्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। पासीघाट ईस्ट सियांग में गर्मी और नमी दोनों महसूस की जा सकती है। दोपहर और शाम के समय बारिश की संभावना है। लोअर दिबांग वैली, रोइंग और दिबांग वैली अनिनी के इलाकों में मौसम ज्यादातर ठंडा और बादलों से घिरा रह सकता है। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू के आसपास इलाकों में बारिश और गरज के साथ मौसम बदलने की संभावना है। सफर करते समय सड़क की स्थिति की जानकारी लेना बेहतर रहेगा। नामसाई डिस्ट्रिक्ट में गर्मी और नमी के बीच हल्की बारिश राहत दे सकती है। रात के समय मौसम सुहाना रह सकता है, लेकिन दिन को ह्यूमिडिटी और हीट ज्यादा रहेगी। अंजाव डिस्ट्रिक्ट के कई ऊंचाई वाले इलाकों में बादल और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में अधिकतर बादलों भरा मौसम है। कुछ जगहों पर बारिश की भी संभावना है। तिरापोर लोंगडिंग, खोंसा लोंगडिंग के साइड में गरज चमक के साथ बारिश का असर है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बारिश और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना जताई है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर डिस्ट्रिक्ट में प्री मानसून वेदर एक्टिविटी देखने को मिल रही है। कई इलाकों में गरज चमक, तेज हवाएं और बारिश की संभावना बनी हुई है। इसलिए रात के सफर में सावधानी रखें, छाता या रेनकोट साथ रखें। पहाड़ी सड़कों पर संभल कर गाड़ी चलाएं। लैंडस्लाइड प्रोन इलाकों में लेटेस्ट अपडेट्स चेक करते रहें। तो दोस्तों, ये था 31 मई के लिए अरुणाचल प्रदेश का मौसम विशेष। बादल चाहे कितना भी घने हो या सुबह का सूरज अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे लूसी। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार। आप सुरक्षित रहिए और इस ठंडी हवा के साथ मुस्कुराते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत की ओर, जो है धड़कन फिल्म से आप सभी का फेवरेट आइकॉनिक गीत नाना करते, जिसे आप हर अंताक्षरी गेम में खेलते थे।

0: श्रोता कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
4: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश

0: मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्रीलायन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ. जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ. डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क। उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
3: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले 2 दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इजराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति उमिन औलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. Defense Minister Rajnath Singh says Indian Navy forced Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Myanmar's President U Min Aung Hlaing arrives in New Delhi on a 5-day visit to India, offers prayers at Mahabodhi Temple in Gaya. Centre notifies levies on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel for fortnight beginning tomorrow. IMD forecasts heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. And in cricket, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in IPL 2026 final in Ahmedabad this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of the Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. The Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said as a result, Pakistan's entire Navy remained confined to its ports.
6: The cowardly terrorist attack in Pahalgam last year outraged the entire nation and stirred deep emotions across the country. In response, all three branches of the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, targeting and neutralizing terrorist infrastructure in Pakistan. While the Indian Army and the Indian Air Force played crucial operational roles in the mission, the Indian Navy remained strategically deployed in the Arabian Sea with full combat readiness, ensuring comprehensive support and preparedness throughout the operation.
5: Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi also said that Indian Navy's immediate deployment of a carrier battle group and its forward operational posture in the Northern Arabian Sea forced the Pakistan Navy to remain confined to harbour or close to the Makran coast. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi last evening. Union Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh received him at the airport. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar also called on Mr. Hlaing. Dr. Jaishankar appreciated Myanmar's president's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. Earlier, President of Myanmar began his 5-day visit to India yesterday by arriving at Bodh Gaya in Bihar.

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, वक्त है पेश करने का अगला कार्यक्रम, हेलो ईटानगर।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेलो ईटानगर और मैं हूं आपकी रेडियो साथी, आपकी आरजे दोस्त आरजे लूसी। आज हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश की पहचान, उसके परंपराओं और उस अनमोल धरोहर के बारे में जो सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, अस्मिता, सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, आज का विषय है मिथुन, जिसे वैज्ञानिक भाषा में बॉस फ्रंटलिस कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मिथुन को सिर्फ एक लाइफ स्टॉक या पशु के रूप में नहीं देखा जाता, ये सम्मान, समृद्धि, परंपरा और सामुदायिक पहचान का प्रतीक है। मिथुन है क्या? मिथुन एक बहुत ही बड़ा बोवाइन पशु है जो मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत जैसे कि नागालैंड के कुछ अन्य हिस्सों में पाए जाते हैं। ये पहाड़ी और वन्य पर्यावरण में आसानी से जीवन बिता सकता है। अरुणाचल प्रदेश को भारत में मिथुन की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्यों में गिना जाता है। दोस्तों, कई ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए मिथुन का महत्व उतना ही है जितना किसी के लिए जमीन या संपत्ति या सोना या जायदाद हो। सांस्कृतिक महत्व यह है कि अरुणाचल प्रदेश की कई जनजातियों जैसे आदि, निशी, गालो, अपतानी, तागिन और अन्य समुदाय में मिथुन का विशेष स्थान है। पारंपरिक उत्सवों, विवाह समारोह और समुदाय कार्यक्रमों में मिथुन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पुराने समय में किसी व्यक्ति की समृद्धि और उसका सामाजिक प्रतिष्ठा, उसके सोशल स्टेटस को का अंदाजा हम उसके पास मौजूद मिथुन की संख्या से लगाया जाता था। आज भी कई गांव में मिथुन को गौरव और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। एक पुरानी कहावत है, जैसे भावना यह देखने को मिलती है, मिथुन सिर्फ धन नहीं, वंश और विरासत का प्रतीक है। मिथुन का जीवन प्रकृति के साथ गहरा संबंध रखता है। ये खुले वनों और पहाड़ी इलाकों में चरते हैं, इसलिए मिथुन पालन लोगों को प्रकृति और जंगल के प्रति जिम्मेदारी भी बनाता है। कई लोग मानते हैं कि सस्टेनेबल मिथुन फार्मिंग यानी मिथुन रियरिंग पारंपरिक इकोलॉजिकल नॉलेज को भी संरक्षित करने में मदद करता है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में कमर्शियल स्लॉटर को पर रोक डाल दी गई है, तो इस मुद्दे पर बात करते हैं जो हाल के समय में काफी चर्चा में रही है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स के कई इलाकों में मिथुन के कमर्शियल स्लॉटर को कमर्शियल स्लॉटर पे प्रतिबंध लगाया गया है। ये फैसला कई लोगों के लिए सांस्कृतिक और संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसे सबसे बड़ा लाभ ये माना जा रहा है कि मिथुन की संख्या और उसके पारंपरिक महत्व को

सुरक्षित रखा जा सके। आने वाली पीढ़ियों को भी मिथुन को ही सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अपने समाज और परंपराओं में देख सकेंगे। जब किसी पशु की व्यवसायिक मांग बहुत बढ़ जाती है तो उसकी संख्या पर प्रभाव पड़ सकता है, तो प्रतिबंध से अनियोजित व्यवसायिक स्लॉटर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, उसके बाद फिर जारी रखेंगे जहां हम बात कर रहे थे मिथुन के बारे में और स्पेशली कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जहां इसके मिथुन के कमर्शियल स्लॉटर पे प्रतिबंधी लगाई गई है।

0: श्रोताओं आपका स्वागत है फिर से कार्यक्रम हेलो ईटानगर में, जहां हम बात कर रहे थे मिथुन के बारे में, जो कि हमारा स्टेट एनिमल है और साथ ही कैपिटल कॉम्प्लेक्स ईटानगर में मिथुन की कमर्शियल स्लॉटरिंग पर पाबंदी लगाई गई है। तो हम अभी जानेंगे कि उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। मिथुन अरुणाचल प्रदेश की ट्राइबल एंड आइडेंटिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसका संरक्षण हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को भी मजबूत करना होता है। ये कदम लोगों को मिथुन सिर्फ बाजार की वस्तु के रूप में नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म कम्युनिटी एसेट के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। हर पॉलिसी के साथ कुछ प्रैक्टिकल सवाल भी जुड़े होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जो परिवार मिथुन से जुड़ी व्यवसायिक गतिविधियों पर निर्भर है, उनके लिए नए विकल्प और सहायता योजनाओं की भी जरूरत होगी। इसीलिए संरक्षण और आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी हमें चाहिए एक बैलेंस। लेकिन अधिकतर लोग इस बात से सहमत हैं कि मिथुन का संरक्षण और उसकी गरिमा बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हमें सिर्फ पहाड़, नदियां और सुंदर दृश्य ही याद आते हैं। हमें याद आती है हमारी परंपरा, हमारी पहचान और वो जीवित विरासत जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिली है। मिथुन उन्हीं विरासतों में से एक है और ये हमें सिखाता है कि प्रगति और परंपरा साथ साथ चल सकते हैं। आधुनिकता को अपनाते हुए भी हम अपनी जड़ों को मजबूत बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मिथुन सिर्फ एक पशु नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान है, सामुदायिक जीवन और पारंपरिक मूल्यों का एक जीवित प्रतीक है और शायद इसीलिए उसके संरक्षण को लेकर लिए जाने वाले कदम सिर्फ पशु संरक्षण नहीं बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण के रूप में भी देखे जाते हैं। जिस समाज को अपनी विरासत का मान होता है, जो अपनी विरासत का इज्जत करते हैं, जो अपनी विरासत अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं, उसका भविष्य भी बहुत मजबूत होता है। इसी विचार के साथ आपसे मैं विदा लेती हूँ इस कार्यक्रम हेलो ईटानगर में। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट और आरजे लूसी। आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो ईटानगर। अपनी संस्कृति पे आप गर्व कीजिए, अपनी विरासत को संजोइए और अरुणाचल प्रदेश की अनोखी पहचान को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा गीतों का सिलसिला जारी रहेगा सिर्फ कार्यक्रम हेलो ईटानगर पे, जो कि प्ले हो रहा है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: Hey, फिर देख रहा है, आज आंख सेक रहा है, कल हाथ सेकेगा, आज ढील छोड़ रहा है, कल खुद ही रोकेगा।

0: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो ईटानगर, यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 MHz यानी 103.1 जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों कुछ पलों में भी आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन औलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम जाएंगे। वे कोटायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कन्नूर में राज्यसभा सांसद सी सदानंद मास्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, विदर्भ के कुछ स्थानों पर बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly daily program. I beg your pardon, it will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Defence Minister Rajnath Singh has said that the Indian Navy forced the entire Pakistan Navy to remain confined to its ports during Operation Sindoor. Addressing the inauguration ceremony of Nausena Shaurya Vatika, an open-air naval museum in Lucknow, he said the Navy played a significant role in maintaining pressure on Pakistan during Operation Sindoor. Defence Minister said Indian Navy was deployed in the Arabian Sea with full preparedness and strength, maintaining constant pressure on the adversary. He said, as a result, Pakistan's entire navy remained confined to its ports.
6: The cowardly terrorist attack in Pahalgam last year outraged the entire nation and stirred deep emotions across the country. In response, all three branches of the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, targeting and neutralizing terrorist infrastructure in Pakistan. While the Indian Army and the Indian Air Force played crucial operational roles in the mission, the Indian Navy remained strategically deployed in the Arabian Sea with full combat readiness, ensuring comprehensive support and preparedness throughout the operation.
5: Navy Chief Admiral Dinesh K. Tripathi also said that Indian Navy's immediate deployment of a carrier battle group and its forward operational posture in the Northern Arabian Sea forced the Pakistan Navy to remain confined to harbour or close to the Makran coast. Centre has revised the export levies on petrol, diesel and aviation turbine fuel for the fortnight beginning tomorrow. The move is aimed at ensuring adequate domestic availability of petroleum products amid continuing uncertainties arising from the West Asia crisis. According to a notification issued by the Ministry of Finance, exports of petrol will attract a duty of 1.5 rupees per litre, while diesel exports will be subject to a duty of 13.5 rupees per litre. The export duty on aviation turbine fuel has been fixed at 9.5 rupees per litre. The Finance Ministry noted that the export levies, comprising special additional excise duty and road and infrastructure cess, were introduced on 27th of March this year and are reviewed every fortnight based on average international prices of crude oil, petrol, diesel and aviation turbine fuel. President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, arrived in New Delhi last evening. Union Minister of State for External Affairs, Kirti Vardhan Singh, received him at the airport. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar also called on Mr. Hlaing, and Dr. Jaishankar appreciated Myanmar President's positive sentiment towards deepening the long outstanding bilateral cooperation. Earlier, President of Myanmar began his five-day visit to India yesterday by arriving at Bodh Gaya in Bihar, where he prayed at the Mahabodhi Temple. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Wednesday. Heavy rainfall is also expected over Odisha, Karnataka, Madhya Pradesh and the northeastern states of the northeastern parts of the country till tomorrow. World No Tobacco Day is being observed today to raise awareness against the dangers of using tobacco. The day is a global initiative by the World Health Organization to end the use of tobacco. The theme for this year is Unmasking the Appeal, Countering Nicotine and Tobacco Addiction. In cricket, Gujarat Titans will be up against defending champions Royal Challengers Bangalore in the final of IPL 2026 at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad today. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

0: गुड मॉर्निंग सुप्रभात। 31 मई की सुहानी सुबह एफएम गोल्ड के साथ मैं उसकल दिल्ली के इस सफर पर मैं हूं आपके साथ कुसुम। आज का ये दिन चलो अपने नाम करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा काम करते हैं, अपने होने को महसूस करते हैं और खुद से बातें करते हैं, बेवजह मुस्कुराते हैं, फुर्सत के पल मीठे एहसास से गुम, कुछ प्यार की बातें और कुछ बातों में तुम। बेहद प्यारा गीत आपके लिए।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का 103.1 मेगाहर्ट्ज है। दोस्तों, अब वक्त है आपको पेश करने का अगला कार्यक्रम फिल्मी गपशप इस छोटे से ब्रेक के बाद।
2: Performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट एंटरटेनमेंट सेगमेंट फिल्मी गपशप में, जहां मिलती है बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें, OTT की दुनिया के नए अपडेट्स, अपकमिंग मूवीज का एक्साइटमेंट और थोड़ी सी गॉसिप, हल्की से हल्की फुल्की चर्चा। मैं हूं आपकी रेडियो साथी, आपकी RJ लूसी, और अगले कुछ देर में हम घुसने वाले हैं सीधा बॉलीवुड के बैक स्टेज एरिया में। तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, चाय का कप अपने पास रखिए और तैयार हो जाइए फिल्मी दुनिया के एक ऐसे रंगीन सफर के लिए। सबसे पहले बात करते हैं थिएटर्स में आने वाली फिल्मों की। बॉलीवुड का मूवी कैलेंडर इस साल काफी पैक्ड नजर आ रहा है। रोमांटिक एंटरटेनर्स से लेकर एक्शन और हिस्टोरिकल ड्रामास तक, हर जॉनर के फैंस के लिए कुछ न कुछ तो तैयार है। इंडस्ट्री में इस वक्त काफी बज है फरहान अख्तर की मच अवेटेड फ्रेंचाइज फिल्म डॉन 3 को लेकर। फिल्म में इस बार रणवीर सिंह नए डॉन के रूप में नजर आने वाले हैं। ये अनाउंसमेंट आते ही सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले थे। कुछ फैंस शाहरुख खान के आइकॉनिक डॉन अवतार को याद कर रहे थे, जबकि कई लोग रणवीर के एनर्जेटिक स्टाइल को लेकर काफी एक्साइटेड भी है। बॉलीवुड में रिप्लेस

इसमें ज्यादा इमोशनल टॉपिक्स शायद सिर्फ आईपीएल टीम सिलेक्शन का ही होता है। रणवीर सिंह के फैंस कह रहे हैं कि वो रोल में अपनी अलग आइडेंटिटी लाएंगे, जबकि पुराने डॉन लवर्स को अब भी कंपैरिजन मोड में है। दोस्तों, आने वाले महीनों में कई बड़े फिल्म बैनर्स अपने फिल्म रिलीजेस कर रही हैं। एक्शन और लार्ज स्केल सिनेमा का ट्रेंड भी अब काफी स्ट्रांग चल रहा है। ऑडियंस थिएटर्स में विजुअल स्पेक्टिकल और लार्जर देन लाइफ स्टोरी टेलिंग देखना पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ रोमांटिक फिल्में जैसे कि उनका वापस मोमेंटम पकड़ती नजर आ रही है। प्रोड्यूसर्स यंग ऑडियंस को टारगेट करते हुए नई नई पैरिंग्स और म्यूजिकल लव स्टोरीज पर फोकस कर रहे हैं। और दोस्तों, बॉलीवुड ट्रेलर कल्चर भी कमाल का हो गया है। पहले टीजर आता था, फिर टीजर का अनाउंसमेंट, फिर ट्रेलर की डेट, फिर ट्रेलर का काउंटडाउन और तब जाके फिल्म का ट्रेलर। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ सुनते हैं हमारा कार्यक्रम का पहला गीत, जिसे आप सुनेंगे तुची रैना की आवाज में। फिल्म आयशा से इस गीत का नाम है गल मिठे मिठे बोल।

0: 16.89 kilometer per liter in petrol and 25.51 kilometer per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
3: श्रोता, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप और अब आपको बता दूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का हंगामा। ओटीटी की दुनिया में नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, सोनी लिव और जी 5 पर लगातार नए शोज और फिल्म्स आ रही हैं। ओटीटी ने ऑडियंस की व्यूइंग हैबिट्स को ही बदल दी है। अब लोग सिर्फ फिल्म्स ही नहीं देखते बल्कि क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, कोर्टरूम ड्रामास और मिनी सीरीज भी बिंज वॉच करते हैं। सिर्फ एक एपिसोड में देखूंगा करके एक सीजन पूरा खत्म कर लेते हैं, तो ये वो झूठ है जो दुनिया भर के ओटीटी यूजर्स रोज बोलते हैं। नेटफ्लिक्स पर इंटरनेशनल और इंडियन कंटेंट दोनों को काफी रिस्पांस मिल रहा है। प्राइम वीडियो में भी नई ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स और बॉलीवुड कोलैबोरेशंस पर फोकस किया जा रहा है। जियो हॉटस्टार पर भी स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन ऑडियंस को काफी अट्रैक्ट कर रहा है। और दोस्तों, आजकल तो सिचुएशन ये है कि टीवी रिमोट से ज्यादा लोग पासवर्ड मैनेज करते हैं। अब चलते हैं हमारे फेवरेट सेगमेंट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, गॉसिप की गली। बॉलीवुड और गॉसिप का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना बॉलीवुड और ड्रामेटिक स्लो मोशन एंट्रीज के। इस वक्त इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिस्कशन डॉन 3 को लेकर चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स और फैन डिस्कशंस में ये भी चर्चा होती है कि फिल्म के डेवलपमेंट प्रोसेस में कई क्रिएटिव चेंजेस आए हैं और उसी वजह से प्रोजेक्ट को लेकर स्पेकुलेशन काफी बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर फैंस रोज नई थियरीज बना रहे हैं और सोशल मीडिया में डिटेक्टिव्स की इमेजिनेशन भी कमाल होती है। अगर दो एक्टर्स एक ही एयरपोर्ट में दिख जाए तो अगले आधे घंटे में फ्रेंडशिप, राइवलरी और सीक्वल सब कुछ अनाउंस हो जाता है। आजकल बॉलीवुड का आधा प्रमोशन सोशल मीडिया पर ही होता है। एक्टर्स के जिम लुक्स, एयरपोर्ट लुक्स, कॉफी लुक्स और कभी कभी तो सनग्लासेस लुक भी ट्रेंड कर जाते हैं। फैंस भी हर पोस्ट को माइक्रोस्कोप की तरह एनालाइज करते हैं। किसने लाइक किया, किसने अनफॉलो किया, किसने स्टोरी देखी, ये सब बॉलीवुड रिसर्च डिपार्टमेंट के बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन चुके हैं। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ जारी रखते हैं हमारा गीतों का सिलसिला। अब सुनते हैं अगला गीत, ये है ऊ बोलेगा या जहाँ पे आप देखेंगे समांथा को, और ये फिल्म है पुष्पा द राइजिंग का।
4: मंगल सिंह की पार्टी के बारे में बहुत सुन रखा था मगर ये पहली बार देखने को मिल रही थी। उस पार्टी में सिर्फ सिंडिकेट वाले नहीं, पुलिस वाले, पॉलिटिशियन, सब बड़े बड़े लोग आए हुए थे। पुष्पा भाव ने इतने करोड़ का माल बचाया ना, उसके लिए एक रात में पुष्पा भाव सबका हीरो बन गया था।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Pace Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप, मैं हूं आपके रेडियो साथी आरजे लूसी और हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड दुनिया की। अभी तक हमने बात की ओटीटी थिएटर्स की, गॉसिप की और अब वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। गाने के बाद हम लौटेंगे और बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग बॉलीवुड बस की, तो आप अभी इंजॉय कीजिए ये बेहतरीन गीत जो है जब तक है जान फिल्म से। गीत का नाम है जिया रे, जिसे गाया है नीति मोहन ने।

0: श्रोताओं, आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। बॉलीवुड में अब प्रीक्वल्स और फ्रेंचाइज फिल्म्स का क्रेज लगातार बना हुआ है। फिल्म मेकर्स उन स्टोरीज को वापस ला रहे हैं जिनके कैरेक्टर्स ऑडियंस को दिलों में पहले से जगह में बना चुके हैं। ऑडियंस को नॉस्टैल्जिया भी मिलता है और नए वर्जन का एक्साइटमेंट भी, लेकिन एक बात तो पक्की है, ओरिजिनल फिल्म्स के फैन हमेशा कंपेयर करेंगे। ये तो बॉलीवुड या हॉलीवुड हो या उसका यूनिवर्सल लॉ है। चलिए दोस्तों, कुछ क्विक फिल्मी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। बॉलीवुड में बारिश का मतलब होता है रोमांस, रियल लाइफ में बारिश का मतलब तो होता है ट्रैफिक। फिल्म में हीरो एग्जाम से पहले गाना गाता है, रियल लाइफ में छात्र एग्जाम से पहले पैनिक मोड में चला जाता है। बॉलीवुड वेडिंग्स में टीन सॉन्ग्स में कम्पीट हो जाती है, रियल लाइफ शादी में 3 दिन भी कम पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, फिल्मी दुनिया की ये रंग बिरंगे यात्रा यही तक थी। आज हमने बात की अपकमिंग फिल्म्स की, ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स के बारे में, सोशल मीडिया बस के भी और कुछ बॉलीवुड गॉसिप। याद रखिए, सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता है, कभी कभी वो सपनों, इमोशंस और यादों का कलेक्शन भी होता है। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी, आपकी आरजे लूसी, और आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी गपशप। गाना चलता रहेगा, कहानियां बनती रहेंगी और बॉलीवुड हमेशा कुछ न कुछ सरप्राइज देता रहेगा। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, फिल्में रहते रहिए और रेडियो के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, गीतों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी आप सुनेंगे चेन्नई एक्सप्रेस से ये गीत लुंगी डांस, जिसे डेडिकेट किया था थलाईवाग।
1: दिस इज द ट्रिब्यूट टू थलाईवाग।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी गपशप या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, कुछ ही पलों में भी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: Sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today.
3: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath main Mukesh Kumar. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो

0: कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
0: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को आज नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक प्रयासों की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। श्री लाइन व्यापारिक मंच को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंट तथा अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होगा और 15 जून तक लागू रहेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। वे कोट्टायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कन्नूर में राज्यसभा सांसद सी सदानंद मास्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मेधा, करुणा और जन कल्याण के प्रति अटूट समर्पण के लिए आदर और सम्मान के साथ याद करता है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the

0: 10 मिनट से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके मनपसंद कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे लूसी, और अगले कुछ देर तक हम साथ मिलकर सुनेंगे वो गाने जो आपने खुद चुने हैं, खुद रिक्वेस्ट किए हैं और अपने खास लोगों के नाम डेडिकेट किए हैं। सबसे पहले दिल से शुक्रिया सभी श्रोताओं का जिन्होंने हमें अपने रिक्वेस्ट भेजे। आपके एसएमएस, आपकी पसंद और आपकी प्यार ही इस प्रोग्राम को इतना खास बनाता है। चाहे आप घर पर हो, ऑफिस में हो, या सफर कर रहे हो, या आज तो संडे है, शायद आप मोस्ट प्रोबेबली अपने घर पर रिलैक्स कर रहे हो और आराम से शायद रेडियो सुन रहे हो, तो ये आज का म्यूजिकल सफर आपके दिन को और भी खुशनुमा बना देगा। तो दोस्तों, रिक्वेस्टें आ चुकी हैं, गाने तैयार हैं और महफिल सज चुकी है। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड, जहां आपकी पसंद का और हर धुन आपके नाम। तो दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड में रिक्वेस्ट का सिलसिला शुरू हो चुका है और सबसे पहले हम दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे सभी श्रोताओं का। तो हमारी पहली फरमाइश आई है गुम्मे माई बागरा से और उनके हस्बैंड, उनके पति जुमकार बागरा से, जो कि हिगी बागरा वेस्ट सियांग के रहने वाले हैं। उन्होंने ये हैना फिल्म का चिट्ठिया नाम का ये गीत हमें फरमाइश की है और इस गीत को गाया है सुरीली आवाज से गाने वाली लता मंगेशकर ने। तो आइए बिना रुक के सुनते हैं ये गीत, बेहतरीन गीत, जिसे गुम्मे माई जी और जुमकर जी ने रिक्वेस्ट की है।

दोस्तों अब बारी है एक ऐसे श्रोता की जिनका नाम आते ही लगता है कि रिक्वेस्ट रजिस्टर में उनकी परमानेंट सीट रिजर्व है। ये असम से हमारे जो कि गोलाघाट के रहने वाले हैं, इनका नाम है रोमेश पात्रो जी। और रोमेश पात्रो जी ने ये एक बहुत ही बेहतरीन गीत की फरमाइश की है। इस गीत का नाम है सुन साहिबा सुन। तो रोमेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यार से आपने हमें ये फरमाइश भेजी है और आप हमें जितने भी फरमाइश भेजते हैं हम उसे खुशी खुशी आपके लिए प्ले कर देते हैं। तो ये लीजिए आपकी फरमाइश पर आपका मनपसंद गीत सिर्फ आकाशवाणी अरुण FM 103.1 MHz कार्यक्रम रेडियो डिमांड पर।

अगली फरमाइश हमें आई है रूपाली मुंडा जी से, जिन्होंने इस गीत को अपने दोस्तों को डेडिकेट किया है. उनके दोस्तों का नाम है मोइनू राबा, कृष्णा हजोंग, अमल बसुमतारी, अंजुल बसुमतारी, अश्मिता बसुमतारी और रमेश पात्र. तो रूपाली जी के दोस्तों, आप सभी बहुत लकी हो, क्योंकि रूपाली जी ने हमारे इस कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पर आप सभी को डेडिकेट करते हुए ये प्यारा सा गाना गीत की फरमाइश की है. और इस गीत का नाम है चोरी मैंने भी तो, जो ये है दलाल फिल्म से. तो ये रूपाली जी की फरमाइश पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली जी. तो पेश है ये गीत.

0: श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रखते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र

दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड में फरमाइशों का ये खूबसूरत सफर जारी है और अब बारी है और एक प्यारे गीत की, जो कि 90s की मधुर यादों को फिर से ताजा कर देती है। कभी कभी दिल की बातें लफ्जों में बयान करना मुश्किल होता है, तो तब ये गाना काम कर देता है जो हम खुद नहीं कर पाते। ये गाना है फिल्म जब प्यार किसी से होता है का, दिल में इस दिल में है क्या। इस फिल्म में सलमान खान और ट्विंकल खन्ना की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और इस गीत आज भी रोमांस लवर्स के बीच अपनी खास जगह बनाए रखते हैं। दिल की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बस एक गाना सुनते ही फिर से खुल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी की याद, किसी मुस्कान या किसी खास पल के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये गीत आपके लिए। चलिए सुनते हैं जब प्यार किसी से होता है, और इस गीत की फरमाइश आई है हमारे प्यारे लोखीनाथ रोंग हांग जी से। तो लोखीनाथ जी की फरमाइश पर ये गीत पेश है।

0: श्रोताओ, ये कार्यक्रम जारी रहेगा छोटे से ब्रेक के बाद। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी इन अपनी फरमाइश को हमारे इस कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पे भेजना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें एसएमएस कर दीजिए। नंबर है 9436887808 पर। दोबारा रिपीट कर दूं, नंबर है 9436887808 पर। हम यहाँ पर हैं आपकी फरमाइश को लेने के लिए और आपकी फरमाइश पर आपका मनपसंद गीत प्ले करने के लिए सिर्फ आकाशवाणी अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात।
1: The office of the district magistrate, capital Itanagar, has observed that illegal earth cutting activities are being carried out at multiple locations without prior permissions from the competent authorities. Such activities pose serious risks to human life and property by increasing the chances of landslides.

0: blocking drains and rivers and damaging public infrastructures such as roads, culverts, and government buildings. These issues become more severe during the monsoon season, leading to frequent road blockages, especially on NH415 and other sector roads. Therefore, under the provisions of the Disaster Management Act 2005, the district magistrate has ordered the following points. All earth-cutting activities by private individuals or government organizations are strictly banned within the Itanagar Capital Region with immediate effect until further notice. Administrative officers have been directed to take immediate action to stop such activities. Police authorities will deploy necessary forces to ensure enforcement of this order. Any violations can be reported to the District Grievances Redressal Cell. And the cell number is 700-5760-115. Strict legal action will be taken against violators under relevant section of the law. Thank you.
1: दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड में आपका स्वागत है. और अब अगला गीत उन सभी श्रोताओं के लिए है जो किसी पुराने दोस्त, किसी अपने या किसी खास शख्स को काफी दिनों बाद मिले हो. फिल्म जब प्यार किसी से होता है का ये खूबसूरत गीत कितने दिनों बाद मिले हो, जिसमें कुमार सानू और अलका याग्निक ने अपनी दिलकश आवाज दी है. मुलाकात की खुशी है, दिल के जज्बात को बहुत ही प्यारे अंदाज में बयान करता है. जिंदगी के सफर में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वक्त ठहर सा गया हो. तो दोस्तों, अपनी यादों के एल्बम का एक और पन्ना खोलिए और एंजॉय कीजिए ये गीत जिसकी फरमाइश पर अभी आप सुनेंगे. गिरेन तेरोंग जी, जो कि कार्बी आंगलोंग असम के हैं, उन्होंने ये फरमाइश की है इस गीत की. तो गिरेन जी, आपकी फरमाइश पर ये आपका मनपसंद गीत पेश है.

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड या आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की पहली प्रसारण सभा यहीं पर समाप्त होती है। मैं थी आपके साथ इस सफर में आरजे लुसी और मेरे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता गोलो कालो। दोस्तों हमारा दूसरी प्रसारण सभा जारी रहेगा। आपके साथ सफर में रहेंगे आरजे पूनम जो कि स्टूडियो पर पहुंच चुकी है।
1: अरुणाचल स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।
2: श्रोताओं दोस्तों आप सभी बने हैं अरुण FM 103.1 MHz पर जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों अभी इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में तथा HPT में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर एति तथा तकनीकी अभियंता टिमटिम है। तो चलिए दोस्तों अब हम सुनते हैं
3: दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए, ये आकाशवाणी है।
4: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
5: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
6: कोई बोले राम राम।
5: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
5: चले
6: ले आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई,
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?
11: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
10: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
11: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
12: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
13: नमस्कार सर। नमस्कार।
14: नमस्कार सर।
2: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका, मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
7: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहां से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहां से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
2: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
13: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
2: वाह वाह बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
13: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है, तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
2: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है?
13: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
2: अनिमेश जी,
7: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है तू कर पाएगा कि नहीं, तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूंगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सब चीज हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
2: अच्छा देखिए मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले एनिमेश बता दे।
7: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही। उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
2: गुरनरवीर क्या कहना चाहेंगे?
13: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है हम भी इम्प्रूव करते हैं, तो दोस्ती भी चाहिए सर। बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं, तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा मैं इससे फास्ट भागूंगा।
2: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है, और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
13: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलियान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप, रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस न हो, कोई बड़ी बिल्डिंग न हो, कोई क्लासरूम भी न हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है।

0: इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक, इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहां युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहां ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी एक साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे।

0: Manen iyi.
1: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे गालो बोली में मन की बात का क्षेत्रीय संस्करण।
2: तान्नारुअम अगम्ब इजानुनु गदग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ग आप मुनामम रेडियोलो मेंकिंजिनाम मन की बातम गालोब मेनलेंजिनामम तपाए गदग ओक काल ताले हिनाम नारुअम अगम्ब मन की बात हो को लगदा नारुअम पारखी दुला माज मकेंदुना गदा हो के निगद मोक मोक हो गो गदा लगाब गुमिन लगाब अगराला इनाम मेन नामम काला ताला मज्जा काग ही दुब इदा इजा प्रोग्राम ग इरोपमेन रफोगो मो एथलेटिक्स अबालो गदा हो के पुनाम्पा नामलो मेन रोपिये आलोगो लोजा झारखंड ग रांची लो नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हम इतो ओगो मुद माद 800 एथलेटिक्स गोब गदा हो के आला पार्टिसिपेट तो अंबिताकलो अपी को अधिक अधिक इवेंट लो अपी नेशनल रिकॉर्डम तोरिका गुरिंदर वीर सिंह विशाल ठीके तेजस्विन शंकर देव मीना ओक कुलदीप कुमार हिग अजन गधी की अधिक अधिक कैटेगरी लो आली रिकॉर्डम मौका मोमेंसो हो पिक ब हिम नारू हिम बधाई जीतना अजन गद्दा अकिन इवेंट गो गदा होगो मज्जा तपका पदक अग 100 मीटर रेस लो दुक्का हिनम यात्सिन दमा लोनी आरा लो मेन्स 100 मीटर रेस लो नेशनल रिकॉर्डम लउम नाब पाका होकनी अन्य एथलेटिक्स लो परजाब इन्नाकु गुरिंदर वीर सिंह ओक अनिमेश कुजूर मुन्यकु मोमला इजाग मन की बात होगो हिगिम खिलाड़ी अनहिम जाब्रखी अमला अनिमेश जी नमस्कार गुरिंदर वीर नोमसिन नमस्कार सत श्री अकाल नमस्कार सर आल्दो अचिनो अतरु ना अचीवमेंट गो इका नुनुक अनि ग जुग हिन म अतरु ना अगरम इका मो गोगिर गोगलम लो जुग हिनामम का तो एक दोला चैलेंजिंग लो इजा जुग हिनमम कादा लको अकेन्ना चैलेंजिंग जिला अकेन्ना एम चैलेंजिंग एम लाला ओक एम लहुम नान लो इला मज्जा अतरुना इंटरेस्टिंग ना अबागो इका मोमुदु मन की बात हिम तानगा दसिन हेंदब नुनुक इनामे नाम अबालो नमस्ते सर मोक आमेन अनिमेश कुजूर मो 200 मीटर ओक 400 मीटर लो नेशनल रिकॉर्ड होल्डर ओके मो छत्तीसगढ़ लोक के बिलोंग दोना सर ओके इजांगो उड़ीसा लोक के खेली दोना मो मन एशियन मेडल ओके वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स लो मेडल लालेला आला ओके मो एथलेटिक्स 2021 लोक के इरोपला ओगोंगो स्कूल लोक के पास आउटला मो सैनिक स्कूल अंबिकापुर लोक के पास आउटला ओके मो लकलो फुटबॉल खेली तो ओके मो पेरेंट्स कोविड अलीरामपेन इदाक ओगो अगुमाइलो इंसर के सरदोब तोतो नो अगुमलो दुंगमेला खेली के पातो का अमला यादोगो कोविड अलीरामपेन नेक बेद मो मो के फुटबॉल तुजेन अजन गद ngom मेंतो स्टेट मीटसिन इरोप्तादु नोसिन होगो इंदला पार्टिसिपेटो का अमला ओके मो पार्टिसिपेटो ओके मो हेमातो होके नेशनल लेवल लगाब सेलेक्शन दोना अमला गोम होके नेशनल लो सेलेक्टो ओके इजांगो भारत गदा एम रिप्रेजेंटला इंटरनेशनल लो खेली दो ओके गुरिंदर वीर सिंह योबला नमस्ते सर मोक अमेन गुरिंदर वीर ओके गो इंडियन नेवी लो पेटी ऑफिसर ओके गो इंडिया होके नारू एम लागबायान स्प्रिंटर इजांगो 100 मीटर लो 10.09 लो नेशनल रिकॉर्ड द मौका ओके गो गदा होके फर्स्ट इंडिया

그다가 퓨처 레가브 오케 포지티브 스피릿 로케 이투 오케 오 무드나 오노 캄베 스포츠 스피릿 켈리 남로신 아케나케남 챌린징 신 아케나케남 가구르힐라 인라가남 알루나가라 누나냠 목베레로케 슈브캄나에 오케 오 무두 눈 그다음 타코카코 모에 엠라 엠바이 누누 메헤넷 캄베토카 मोविस जितना आलरुदो सर आलरुदो सर आलरुदो गदाग मोके काले ताले हिनाम गद्दा इजामलो गदाग अतुगोन मोकलो माजा आगदु दोनी कुला दोइता बो आगो एमबिदाक होमोइलो आउएम इनस्कास नाम लगा ब लगी जद्दा दु इस तु यार तोका दोनीलो नेंदिंजा ब इयोमसिन एनसी हिरु तोका ओकलाम बालो गवर्नमेंट सिन या कजा गाइडलाइन दम जितु अगम गादम मुपामा ब इरु योका अजन गादा मुग होगो अगम एंगी नामम मुनो किचन लोसिन एंदो नुन सिन कादलप यादलो अगो गुरब दोते ओगो किचन लोके दोनाम तुनाम आबा आबा नारु अदक रोबदना लग लग ब पुसिलो के इस सिन आदक ब नेंदु दही मोला तागुंगी मानम उम्रोपला लोकेल तु नाम आबा आबा एम पारोप निरोपदु नो भारत गदाग नोट पेललो इनियम तागुंगी माना दोकेन नाम ओक अगासापम सिन आजिगो रियाद ब एनिये पंजाब हरियाणा लो इनियम नो लस्सीम पाए गिलास पुतरु नालो राजस्थान ओक गुजरात लो चास गायना अदक अदक ना सात लो दोनाम तुनाम मोदना ओके बिहार झारखंड ईस्ट उत्तर प्रदेश लो सत्तू लोक शरबत अदक अदक ना तुके ना हिरु नाम पाए नोका किये सिन दोजिये रुये तोरनाम सिन पाए कोनकन ओके गोवालो कोकम शरबत सोल कड़ी एम पाए साउथ इंडिया लो पानकम नीर मोर संबारम ओक ओडिशा लो बेलपना हिगी ट्रेडिशनल तुनाम न्यूम्ब इमा गदाग अदक अदक मोगलो के अबागोन्ना ओके होके एक भारत श्रेष्ठ भारत गायना अबायम सिन का पदांगना ओके आगोमा केन गो तागप तो का होके तू त्याना मुनु किचन लोक के नेंदना मुनु ग्रिक नाम लोक के नेंदना यो के बात तना ब्रेंडिंग कामा एक दोला नारू जेनरेशन के एक्सपीरियंस होगो दोदना नुन सिन अगदाग होगो ट्रेडिशनल तु नाम हिम तुरु दोरु तोका अजन गद्दा लोबो आयोम नाम लो आगोमाई जाप का हिब दोना एग तागु बाबलो तागु ही गई जाप का ही नाम अबागो गदा होगो तागु बाबलो जाप का ही माना नाम अकेनान गोन्यूम लप महाराष्ट्र ओक कोनकन ग हापुस अल्पोन्सो गुजरात के केसर हिगी तागु अलग हिलिक दोरा तनम उत्तर प्रदेश के दशहरी ओक मेरी काशी के लंगरा गायना लंगरा तागु ग पांगना म निन्रो को के बसिन म ग अमर जे जे बैदु बिहार ग जरदालु ग तागुआ मुक ओदो लोकसिन हु सेंदु बैदो चोंसा मालदा नारू अमेन गधोगो निगत ग म पामोपा दो धक साउथ इंडिया पेलब इनियम बंगलपल्ली तोतापुरी नीलम मालगोवा बंगाल के हिम सागर ओडिशा ओक आंध्र प्रदेश के सुवर्ण रेखा नारू मोको अदक अदक ल दोना ओगो तागु ग अमरसिन अदक ल दोना अजन गद्दा तागु ग हिगी अबा हिगी दोलू लोक ग्लोबल मार्केट लोब पुला दो धक मन की बात ग पेले लोक गो रिकनाम इन अनियाबर असियाबर हमसिन कोई किए आजन गद्दा इजाग होगो होमोई होगो स्कूल सिन चुट्टी दोना एक दोला गो हम्ब क्लास इन बाब लो आगम मेनिये नून सिन ताक दोला एडमिशन काला मुए आजन गद्दा नून वाकन स्कूल गो मुका हूं तो का ओगो स्कूल ओगो ओमेय सिन यूथ सिन अनाबगाद सिन आदब योलो फीस कामा दोब विल्डिंग अत

0: पहुंची मिल
1: विशेष होता है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये पट्टियां चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप गर्म हवाएं ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइन जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
2: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने झारखंड के रांची में हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को विभिन्न स्पर्धाओं में 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान क्लब पूरे देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय का भी उल्लेख किया। इस विद्यालय ने पिछले साल अपनी 50वीं वर्षगांठ पूरी की। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने में इस विद्यालय नेटवर्क की भूमिका सराहनीय है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान ले रहे हैं। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। घायलों में 3 की हालत गंभीर है, शेष 5 मरीजों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की आशंका है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी संभावना है, जबकि दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका व्यक्त की गई है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फयान से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi said that the government is continuously making efforts to preserve such priceless heritage sites in India. He informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani today, Mr. Modi said that three rare copper plates have been found there related to Maharshi Bal Arjun of the Panduvanshi dynasty of the 6th and 7th centuries.
2: Gyan Bharatam Abhiyan ke tahat Chhattisgarh ke Malhar mein bhi ek mahatvapurna khoj hui hai. Yahan teen durlabh ताम्र पट्टिकाएं मिली है. विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं. ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है. इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है.
3: The Prime Minister also mentioned his recent visit to the Netherlands, where in a special ceremony ancient copper plates from the Chola period were returned to India. Mr. Modi said people are sharing joy and expressing pride, and the Tamil community around the world is also particularly enthusiastic about this. Prime Minister Modi has urged the people of the country to take utmost care during the prevailing hot weather and follow the guidelines issued by various government departments in this regard.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है. तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है. पानी पीते रहिए. धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले. इस दिशा में सरकार

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

श्रोताओं दोस्तों, चलिए अभी आपको सुनाते हैं हमारा अगला कार्यक्रम जिसका नाम है हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। तो चलिए करते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत एक बेहतरीन गीत के साथ जो लिया गया है फिल्म कल हो ना हो से। तो चलिए इस बेहतरीन गीत जिसके बोल हैं माही वे का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।

श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत जो लिया गया है फिल्म कलंक से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

अभी आप सुन रहे थे इस बेहतरीन गीत को जो लिया गया है फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से, जिसे गाया था रूप कुमार राठौड़ ने। तो चलिए इस कार्यक्रम को अब समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग यहीं पर होता है समाप्त। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं दोस्तों, अभी आप आनंद लेंगे कार्यक्रम गीत माला का, जो कि हमारे फौजी भाइयों और बहनों को समर्पित है, जो हमारे लिए हर वक्त सीमा पर तैनात रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन गीत के साथ, जो कहीं ना कहीं हमारे फौजी भाइयों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये लिया गया है फिल्म केसरी से, जो कि फौज के बारे में बताती है, कैसे उन्होंने एक जंग लड़ी थी उसके बारे में इस फिल्म में दर्शाया गया है, और उसी से रिलेटेड ये गाना भी है। तो चलिए इस बेहतरीन गीत, जिसके बोल हैं तेरी मिट्टी में मिल जावा, को सुनते हैं बी पराग की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर हमारे सभी श्रोताओं और

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट

0: इन साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोतों दोस्तों, आप सभी बने हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत माला का, जो कि हमारे फौजी भाइयों और बहनों के लिए समर्पित है। श्रोतों दोस्तों, अभी आपको महसूस हो रहा होगा कि अरुणाचल में भी गर्मी बढ़ गई है, कहीं ना कहीं आपको भी गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन अभी टेम्परेचर 40 डिग्री के नीचे ही है, फिर भी हम इतना गर्म महसूस कर रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं पंखे या एसी की जरूरत लग रही है। लेकिन लेकिन लेकिन आप सोच रहे होंगे, मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ? तो सोच के देखिए, उन नौजवानों की, उन देशभक्त जो कि सीमा पर तैनात हैं, उन फौजी भाइयों और बहनों के बारे में सोचिए जो राजस्थान की तपती धूप में, कड़ाके की गर्मी में और रेगिस्तान में खड़े हैं और वहां टेम्परेचर 50-55 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, और उस वक्त इतने सारी अपने हथियारों से तैनात भारी भरकम और हमारी रक्षा करने के लिए वो वहां पर तैनात है उस भीषण गर्मी में भी। तो हमें उन सभी फौजी भाइयों और बहनों को हमारी तरफ से सलाम और शुक्रिया कहना तो बनता है। तो श्रोताओं दोस्तों, आप सभी की तरफ से भी मैं सभी फौजी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और सलाम कहना चाहूंगी, क्योंकि आप अगर हैं तो, आप अगर उस भीषण गर्मी में तैनात खड़े हैं, तभी हमारा भारत देश और जो हमारी सीमाएं हैं वो सुरक्षित हैं और हम चैन की सांस ले पा रहे हैं, हम खुली हवा में घूम रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत, जो लिया गया है विजय पथ फिल्म से, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर, आप सभी श्रोताओं दोस्तों और फौजी भाइयों बहनों के साथ।

0: Studio 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत माला का, जो कि हमारे फौजी भाइयों और बहनों को समर्पित है। तो दोस्तों, एक आपको सुनाती हूँ शायरी, जो कि हमारे फौजी भाइयों से कहीं ना कहीं जुड़ी है। ये वर्दी है एकता अखंडता की, तिरंगे की आन बान शान है। शत-शत नमन इसके जज्बे को, ये बलिदानों की प्रतीक है। तो दोस्तों, कुछ कस्में हैं जो हम निभाए जा रहे हैं। हम तुम्हें चाहते थे और तुम्हें ही चाहे जा रहे हैं। तो किसी फौजी भाई ने ये जरूर वतन के लिए लिखा होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं एक और खूबसूरत गीत, जो लिया गया है फिल्म परदेश से। इस बेहतरीन गीत को गाया है हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति, शंकर महादेवन और आदित्य नारायण ने। इस बेहतरीन गीत के बोल हैं आई लव माई इंडिया। तो दोस्तों, इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, आप सभी श्रोताओं दोस्तों और हमारे फौजी भाइयों और बहनों के साथ। कृष्ण कृष्ण

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतमाला, जो कि हमारे फौजी भाइयों और बहनों को समर्पित है। यह आकाशवाणी ईटानगर कारून FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
2: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक अपनी पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
2: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके,

0: जसविंद शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले एक वीडियो का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण होता है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत करने पर बल दिया। सिलीगुड़ी में श्री बोस ने बताया कि पर्याप्त बाड़ न लगाए जाने के कारण भारत बांग्लादेश सीमा का एक संवेदनशील हिस्सा असुरक्षित बना हुआ है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण हो रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमताओं से लैस किया जाएगा। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक चार मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा और ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi says that the government is continuously making efforts to preserve priceless heritage sites in India. He informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh, under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani today, Mr. Modi said that 3 rare copper plates have been found there related to Maharishi Balarjun of the Panduvanshi dynasty of the 6th and 7th centuries.
2: Gyan Bharatam Abhiyan ke tahat Chhattisgarh ke Malhar mein bhi एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
1: The Prime Minister also mentioned his recent visit to the Netherlands, where in a special ceremony, ancient copper plates from the Chola period were returned to India. Mr. Modi said people are sharing joy and expressing pride, and the Tamil community around the world is also particularly enthusiastic about this. Prime Minister Modi urged the people of the country to take utmost care during the prevailing hot weather and follow the guidelines issued by various government departments in this regard.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: In his Mann Ki Baat program, the Prime Minister talked about the recently held National Senior Athletics Federation competition in Ranchi, Jharkhand, where nearly 800 athletes participated. He congratulated Gurinder Veer Singh, Vishal TK, Tejaswin Shankar, Dev Meena and Kuldeep Kumar for breaking 4 national records in different events. In his address, Prime Minister Modi also appreciated the efforts of Saji Valasheril of Aluva in Keralam, who runs a swimming club with no fees in which more than 15,000 people have learned to swim. 3 persons lost their lives after commercial building collapsed near

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी तथा अंग्रेजी समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोतम दोस्तों, अब समय हो चला है कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का। तो चलिए दोस्तों, कुछ गाने होते हैं जो वक्त के साथ नहीं जज्बातों के साथ चलते हैं और आपको सुनाते हैं एक ऐसा ही नगमा जो लिया गया है फिल्म आन मिलो सजना से, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। और इस बेहतरीन गीत के बोल हैं, अच्छा तो हम चलते हैं। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 MHz पर।
1: तो हम चलते हैं, अच्छा।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का। तो चलिए आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर, जिसे लिया गया है फिल्म नदियां के पार से। इस बेहतरीन गीत के

गायक कलाकार हैं हेमलता और जसपाल सिंह, और इसके गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Arkemis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी हमें हौसला देती है और उनकी अनुपस्थिति दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर देती है। कुछ एहसास शब्दों में बयां नहीं हो पाते, लेकिन संगीत उन्हें बड़ी खूबसूरती से व्यक्त कर देता है। आज का हमारा गीत भी कुछ ऐसी ही भावनाओं को अपने सुरों से समेटे हुए हैं। साल 1970 में रिलीज हुई फिल्म ही रांझा से लिया गया यह मधुर गीत मिलो न तुम तो हम घबराएं। इस गीत को अपनी जादुई आवाज से अमर बनाया है लता मंगेशकर ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने, जिनकी धुनों में भावनाओं की गहराइयां हमेशा महसूस होती है। और इस गीत के शब्दों में प्रेम की कोमलता और विरह की कसक बेहद खूबसूरती से उभर कर आती है। दोस्तों, इस गीत की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी है। न कोई शोर, न कोई दिखावा, बस दिल की एक सीधी सच्ची पुकार। जब लता जी की आवाज में ये पंक्तियां सुनाई देती है तो ऐसा लगता है जैसा कोई अपने प्रिय की अनुपस्थिति में अपने मन की बेचैनी बयां कर रहा हूं। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कभी आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स रहा है जिसकी मौजूदगी से हर मुश्किल आसान लगती है और जिसके दूर होते ही दिल में एक खालीपन सा महसूस होने लगता है। शायद यही कारण है यह गीत दशकों बाद भी उतना ही ताजा और दिल के करीब है। तो आइए दोस्तों, यादों की इस खूबसूरत राह पर आगे बढ़ते हुए दिल को छू लेने वाले आवाज और मदन मोहन साहब की मनमोहक धुन और प्रेम के कोमल एहसासों से सजा एक सदाबहार नगमा सुनते हैं।

0: स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोतों दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत जो लिया गया है फिल्म चौधमी का चांद से। इस बेहतरीन गीत को लिखा है शकील बदायूं ने और संगीत दिया है रवि ने, और इस बेहतरीन गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने। तो चलिए, इस बेहतरीन गीत जिसके बोल भी हैं चौधवी का चांद हो, सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी श्रोताओं दोस्तों के साथ।

0: वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोताओं दोस्तों, आप सभी बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर होता है समाप्त, और अब आप आनंद लेंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का, सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और अब आपको सुनाते हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम को। तो चलिए इस कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनाते हैं फिल्म सुल्तान से, जिसके बोल हैं जग घूमिया, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत जो लिया गया है फिल्म बैड न्यूज से, जिसे गाया है करण औजला ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत तौबा तौबा का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। तो चलिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत, चुलिया गया है फिल्म तमाशा से। तो चलिए, इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस छठी सातवीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर

0: रही है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
2: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
2: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जर्दालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
2: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
3: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
4: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
2: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
2: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
2: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
0: नेवी, एयरफोर्स,
5: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
0: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोएबुल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चार पांच दिन में दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिण

0: पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले दो दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्र पट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करती हूं। मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे पूनम और तैयार हूं आपके लिए एक और बेहतरीन कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है हिट्स ऑफ 90s। इसमें हम आपको सुनाएंगे 90s के दशक के कुछ सुनहरे गाने। तो चलिए करते हैं बीते पलों को याद और सुनते हैं कुछ बेहतरीन गीत। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनाते हैं फिल्म कुछ कुछ होता है से एक बेहतरीन गीत, जिसके बोल हैं साजन जी घर आए, जिसे गाया है कुमार सानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण FM 103.1 MHz पर आप सभी श्रोताओं दोस्तों के साथ।

0: roads, culverts, and government buildings. These issues become more severe during the monsoon season, leading to frequent road blockages, especially on NH415 and other sector roads. Therefore, under the provisions of the Disaster Management Act 2005, the district magistrate has ordered the following points. All earth-cutting activities by private individuals or government organizations are strictly banned within the Itanagar Capital Region with immediate effect until further notice. Administrative officers have been directed to take immediate action to stop such activities. Police authorities will deploy necessary forces to ensure enforcement of this order. Any violations can be reported to the District Grievances Redressal Cell. And the cell number is 700-5760-115. Strict legal action will be taken against violators under relevant section of the law. Thank you.
1: श्रोताओं दोस्तों आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर जहां होती है दिल से दिल की बात और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का। तो दोस्तों एक और बेहतरीन नगमा आपके लिए तैयार है जो लिया गया है फिल्म मोहरा से जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने पहचान लिया होगा मैं किस गाने की बात कर रही हूँ। तो ये बेहतरीन गीत जिसके बोल हैं टिप टिप बरसा पानी का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी श्रोताओं दोस्तों के साथ।

0: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: श्रोता दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको एक और खूबसूरत गीत सुनाते हैं, जो लिया गया है फिल्म डर से उदित नारायण की आवाज में। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

अभी आप सुन रहे थे मिशमी श्रोताओं के कार्यक्रम को। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद लेंगे ताई कामती श्रोताओं के कार्यक्रम का।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: दिल तक बात पहुंची मिलते मिलते सनम, ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

श्रोतम दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं बॉलीवुड अपडेट्स कुछ हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए लेते हैं आज की पहली खबर को। एक गाने में सिर्फ यूं ही लिख दिए कोई बोल नहीं होते, बल्कि वो किसी के दिल की आस, किसी के टूटे दिल की टीस या फिर किसी की याद को झलकाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही गीत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे उत्तर प्रदेश बिहार में सोहर या सोहर गीत कहा जाता है। इसे खुशी मनाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सोहर सिर्फ संगीत नहीं है, यह भावना, परंपरा और हमारी संस्कृति की आत्मा है। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड के लोग किसी भी उत्सव में इसे बड़े रस के साथ गाते हैं। हर शादी ब्याह और बच्चे के जन्म के उत्सवों से भी ये गाना गूंजता है। आज हम जिस लोकप्रिय सोहर के बारे में आपको बताने वाले हैं, उसे मालिनी अवस्थी ने 11 से 12 साल पहले अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया था। हम बात कर रहे हैं बच्चे के जन्मोत्सव में गाने वाले पॉपुलर सोहर पहला सांस की। पहला सांस भले ही मालिनी अवस्थी ने 2014 से 2015 के आसपास गाया था, लेकिन जिस लोकगीत पर आधारित है वह सैकड़ों साल पुरानी अवधि संस्कृति विरासत है। अगली खबर है एक तस्वीर जो ऑनलाइन रिलेशनशिप की अफवाह को भी हवा दे रही है। यह पोस्ट उस वीडियो के वायरल होने के कुछ ही दिनों बाद आई थी जिसमें सिंगर अभिनेत्री के गाल पर किस करते नजर आ रहे थे। इसके बाद से ही फैंस ये क्योस लगा रहे हैं कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल डिसूजा, जिन्होंने की एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी और जिसके बाद ऑनलाइन काफी हलचल मच गई। अगले खबर है सिनेमाघरों में एक साइकोलॉजी हॉरर फिल्म रिलीज हुई है जो भले ही हॉलीवुड की है, लेकिन इसने भारतीय ऑडियंस के दिलों पर भी खौफ भर दिया है। ये फिल्म को देखकर कार्तिक आर्यन भी ऑब्सेस्ड हो गए हैं। ये फिल्म जिस दिन रिलीज हुई है दुनिया भर के कमाई के नए रिकॉर्ड्स बना रही है। 1000 करोड़ के पार पहुंची फिल्म का भारत में भी दबदबा देखने को मिल रहा है। यह फिल्म है 1 घंटे और 49 मिनट की हॉलीवुड साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर ऑब्सेशन, जो कि 29 मई को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इनका रिव्यू कार्तिक आर्यन ने भी दिया है। वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए इसका रिव्यू देने से। अगली खबर है जन नायकन की रिलीज डेट तमिल सिनेमा के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक बनी।

फिल्म की कहानी कराची के लियारी इलाके की वास्तविक घटनाओं और आपराधिक गिरोहों के से प्रेरित है। टॉक जर्नलिज्म 2026 का एक वीडियो ANI ने शेयर किया। आरिफ ने पत्रकार सौरभ त्रिवेदी से बातचीत के दौरान ये बातें कही है। उन्होंने कहा, मैं कराची के एक कस्बे का मेयर था। धुरंधर फिल्म के बनने के समय ही मैं निर्वाचित हुआ था। मेरा जन्म और पालन पोषण लियारी में हुआ है, इसीलिए मुझे पता है कि फिल्म में जो भी कुछ दिखाया गया है वह सच है। उन्होंने आगे कहा, मेरा जन्म कराची में हुआ था, लेकिन मेरे माता पिता का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। मैं खुद भी भारतीय मूल का मानता हूँ, पाकिस्तानी नहीं। तो उन्होंने भी बताया कि ये फिल्म कहीं ना कहीं रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है और ये कहानी सच है। एक और बहुत ही पुराना गीत जो फाल्गुनी पाठक का है, सावन में मोरनी बनके, एक बार फिर से ट्रेंड में है। आजकल इस पर फिर से बहुत सारी रील्स बन रही है। अजीत कुमार की मां के निधन पर भावुक हुए सीएम विजय और त्रिशा, दुख की घड़ी में दोस्त से मिलने पहुंचे एक्टर। अब हम आपको सुनाते हैं एक बेहतरीन गीत जो लिया गया है फिल्म हसी तो फसी से, जिसे गाया है चिन्मय श्रीपदा और शेखर रविज्ञानी ने। तो चलिए इस बेहतरीन गीत जिसके बोल हैं जह नसीब का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और कुछ हिंदी गीतों का। यह आकाशवाणी ईटानगर कारून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। अभी आप सुनेंगे वांछोर श्रोताओं के समाचार।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि मेलेन मनी सबन मता तारीख।

श्रोताओं, दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं के समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोताओं, दोस्तों, आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे कुछ बेहतरीन गीत, आशा है आपको पसंद आएंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन गीत बादशाह हो फिल्म से। राहत फतेह अली खान और नुसरत फतेह अली खान की आवाज में।

श्रोतम दोस्तों, आप सभी बने हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनाते हैं एक और बेहतरीन गीत, चुलिया गया है फिल्म परम सुंदरी से। चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। श्रोताओं दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद लेंगे ईदू मिशमी श्रोताओं के समाचारों का।

0: रहे ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
1: प्यार भरे अल्फाजों में
0: दिल से दिल
2: की बात। आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ शोला पुची जी आसू खे गए इनी अमरलिनी एत निची दुमिशमिया होला के जी एलो मिखू मन की बात मा पीएम नरेंद्र मोदी में एचाहो इनी तीदू के नेता दो न प्रलोगा हो केबा में गवर्नमेंट में गाइडलाइंस हा है आहू लो जी न लाने लगा खा अदुने पीएम में एंशन चोला पीरियड ची कॉपर प्लेट नेदरलैंड मने इंडिया मा एतेगा ना है इंडिया ची कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्व एवे के बने तांदो आरु दगा दलाने लगा खा अदुने मिस्टर मोदी में टीचर्स नेगर कोयल ची गिरीजा अम्मा गो होलमा स्कूल्स रन एजी के बने तांदो प्रा ए बदलाने लगा खा अदुने गिरीजा अम्मा में स्कूल आलम्बा गो इन्हीं के मा पाउं प्रागे इंडियन सोल्जर्स गो पेट्रियोटिज्म दोने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज आहिवे के बने डोनेट एजी नलाने लाजी खा एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन में अनिहु यू चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंडियन नेवी मा ची शाबा खा चीप शापा कंट्री ची मैरीटाइम दोने इंडियन ओशन दो सिक्योरिटी हवे लाने लगा खा आदोने ऑपरेशनल रेडीनेस मॉडर्नाइजेशन इंडिया ची स्ट्रेटेजिक दोने इकोनॉमिक इंट्रेंस दो पु जोवे लाने लगा खा जनरल मैनेजर ने ऑफिसर इंचार्ज नबर्ट ईटानगर ऑफिस ची एसवी रंगा राव में अरुणाचल प्रदेश गवर्नर के टी परनायक गो राजभवन ईटानगर में मीटिंग जगह खा रूरल लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पाकुन जोयगा आलम्बो के बने रूरल कम्युनिटी गो प्रभा आजुपू चिजगा लखा गवर्नर फार्मर्स में फार्मर्स दोने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉटेज इंडस्ट्रीज आर्टिशन दोने रूरल एंटरप्रेनर्स गो गे बने जो पू चिचगा लखा डीसीएम टूर्नामेंट में दीनदयाल उपाध्याय प्राशी कृष्णन महा अभियान एजरानी होने अनिहुता हो रोइंग मा अखगा दो गिवने एचआर प्रोग्राम में आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन दोने स्पिरिट ऑफ पब्लिक सर्विस प्रभा आजीव मा तानों जोरो वे सदा विदलने लगा खा एपी एसटीएस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मेगा हेल्थ मेला नेहरू स्टेडियम मा हेल्थ डिपार्टमेंट ने ब्राइट मिशन विजन नॉर्थ ईस्ट डिब्रुगढ़ में अखागा मा मालोकापिलु इमु में बेनिफिट चिगा ही बखा एचा प्रोग्राम मा टीबी स्क्रीनिंग चेस्ट एक्सरे एनसीडीएस फ्री तमा हादोने एलोबामा ची चेकअप एगा खा मालोकासोनी हूँ इमु में एलोबामा ची चेकअप एगा ही तो वा आयदोने मालोलु ई हूँ इमु आलम्ब में आंदुमा चश्मा चिगा ही बखा बीच उत्सव एजरा निहोने अनहुता हो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल याजली कई पान्योर डिस्ट्रिक्ट मा अखागा ही बामा एचा इवेंट है सीट्स ऑफ होप लने इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन दोने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बने अखागा लमा स्कूल स्टूडेंट्स कम्युनिटी सीट कंजर्वर यूथ दोने निशिने आपातनी काउंसिल्स चिमे जिम्बेगा के बखा एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेयरपर्सन सोम्या स्वामीनाथन में केबीके कई पानियों को इंडिजिनियस इकोलॉजिकल नॉलेज डॉक्यूमेंटेशन मान जोरोगा वे आई दोने अब नेशनल पॉलिसी डेवलपमेंट मा भी कंट्रीब्यूट एवेदलाने लगा खा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स अरुणाचल प्रदेश में स्टेट स्काउट्स एंड गाइड फेलोशिप गो जोरोगा गेने आरके मिशन तमकुमा विजिट एगामा स्ट्रीट ट्रेनिंग कमिश्नर कैंपी पाकम में लीड एगाने पेशन अलम्ब गो रिफ्रेशमेंट हागमा चिल्ड्रन वार्ड मेल फीमेल मेटर्निटी दोने इमरजेंसी वार्ड मा आपीगा खा एतनी आहो अलीगे माउंदवाई एचमता आसेओ सोखे
0: अभी आप सुन रहे थे ईदू मिशमी श्रोताओं के समाचारिया का।

आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अभी आप आनंद लेंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का। तो चलिए देर ना करते हुए सुनाते हैं आपको एक बेहतरीन गीत, जो लिया गया है फिल्म शोर इन द सिटी से। गीत के बोल हैं साइबो। तो चलिए इस बेहतरीन गीत का आनंद लेते हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

0: Setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me. Come on, heal me.
1: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, इसी के साथ हमारी दूसरी प्रसारण सभा यहीं पर होती है समाप्त। उम्मीद है हमने आप श्रोताओं को भरपूर एंटरटेन किया होगा। एफएम के कार्यक्रम जारी रहेंगे और आपके आगे के सफर में जुड़ने वाले हैं आरजे साजिद। आज की दूसरी प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एफएम ट्रांसमीटर में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैयर एती तथा तकनीकी अभियंता टिमटिम। श्रोतों दोस्तों, तो अब मुझे यानी अपनी आरजे साथी पूनम को दीजिए इजाजत और अब आप सुनेंगे तांगशा श्रोताओं के समाचारों को अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अपनी रेडियो साथी साजिद के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

아카스완이 이다나글 디브루걸 마초 사룽난로 고항 와심갱랑러 마초랑 사 방캉랑 크렘로 동모 프라임 미니스터 나렌드라 모디르 문왕 메이므루크트 아로퍼크몽낭 거먼 디파트멘탐 드 가이드라인 쿠르퍼 마니모 프라임 미니스터 루크트 마초 사 아카스완이모 먼틀리 라디오 프로그램 만키 바트 프로그램낭 프라임 미니스터 모디르 퍼만퍼 판트 퍼모 अनेक अपि नेदरलैंड नंग कातनंग फनरो परकमुंग नंग फनरो परजु स्पेशल सेरेमनी तगयांग तनंग चोला पीरियड लकवंग अकिंगवंग तामा कोपर प्लेट पान पर इंडिया म थवे कुजेक तंगरो प्राइम मिनिस्टर फंद अरो कोपर प्लेट चोला डायनेस्टी र करोडक्त प्रप कतग्र अरो चोला एम्पायर प अहेंग्यांग तो उनका प्राइम मिनिस्टर जो फंड पर मो पन रिलेशन जो होम साउथीस एशियन मुंग ताम जम मो जांग तो पर मन रो कुतंग उनका प्राइम मिनिस्टर जो फंड पर मो प्राइम मिनिस्टर मोदी रे गिरिजा अम्मा मन फंड रो गिरिजा अम्मा पर तमिलनाडु वंग नगर कोल नंग टीचर अपीरे रंगसर बंगा अथम ताजे सरबंगा तानले स्कूल पर सुलाई रंगो फंद अरो गिरिजा अमार मन की बात प्रोग्राम पर तारो अपीर मुंगवांग सिपाही हेंग रांग म करुम कुम प्लेस लाम त अरो सराय सिपाही हेंग रांग म असा वो नंग सांग सिंगन करुम कुम नौसा ताम म रोक त मुरो प्राइम मिनिस्टर मोदी र फंद एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन र मचोसा लखुरासन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कम चार्ल्स पर लामत एडमिरल डिनेस के त्रिपाठी कलाइनांगसो अपीप चीफ ऑफ नेवल स्टाफ म तव्यांग तंगु रुक्त प्रजु अन्य चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन र मीडियावन म फानतनांग मुंग वोंकांग म इंडियन नेवी र नरी म कम सोमचिंगु फानत ईटानगर वंग नाबार्ड रीजनल ऑफिस वंग जनरल मैनेजर कम ऑफिसर इंचार्ज एस बी रंगाराव र मनई ईटानगर नंग लोकभवन नंग स्टेट वंग गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी पटनायक म रहम वंग तंगो रोक मीटिंग कथुंग दंग रूरल लाइवलीहुड प सहंग म परम स्टेट वंग पक्सोम वन नई रूरल कम्युनिटी वन इकोनॉमिक काउ प तहु म गवर्नर नाबार्ड जनरल मैनेजर में रूक अरो स्टेट इकोनॉमी नंग तकरुम नंग म एग्रीकल्चरल सेक्टर स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस कॉटेज नई विलेज इंडस्ट्री आर्टिजन नई रूरल एंटरप्रेन्योर्स म क्रेडिट पर तकतंग बंग मुम कुरंग गवर्नर नाबार्ड ऑफिशियल म रूक पर जू नाबार्ड ऑफिशियल एस बी रंगाराव र स्टेट नंग अरियंग पर रूरल हावंग नई पक्सोमवन कम्युनिटी म ऑर्गेनाइजेशन र करुम कुशिंग रो गवर्नर र काखाम कुतुंग रुक रोइंग नंग सियांग जोंतु म दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान तगयांग तनांग मनई अतसुपसा सेरेमोनी नंग डेपुटी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन तोंगथो कतुंग रुक डेपुटी चीफ मिनिस्टर सोशल मीडिया पोस्ट कुतनांग कार्यकर्ता सेंग तुंगनांग आइडियोलॉजी क्लैरिटी पर सेंग म ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन तग्यांग म काउनांग पर ट्रेनिंग प्रोग्राम पर आरियंग प्लेटफॉर्म जांग तंगु फंद आरो पर ओकेजन नंग डेपुटी चीफ मिनिस्टर चौना मेन्द्र दिबांग वैली नई लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट वांग वमंगरोक सोशल वर्कर्स हिंग म फेलिसिटेट कुतंगो रोक खुनसा नंग एपी एस टी एस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन सरिंग रनांग मनई खुनसा नंग अजुंग मेगा हेल्थ मेला तगयांग तंगो रोक तिरप डिस्ट्रिक्ट वंग हेल्थ डिपार्टमेंट नई डिब्रुगढ़ वंग ब्राइट विजन एनी र करुमरो मनई खुनसा वंग नेहरू स्टेडियम नंग पर हेल्थ मेला तगयांग तनांग tuberculosis screening chest x-ray non communicable disease nsd screening tagyang tu promo among more free medicine mafam kuta
ပရိုဂျူအမုံမနီကူရိုင်မဖရီအိုက်စကရီနင်းကမ်တကယံတနံရချရောမရာဆေမေဟင်းမီကူရိုက်တပရဗန်

दोस्तों, अगर निभाने की इच्छा दोनों तरफ से हो तो दुनिया का कोई भी रिश्ता कभी नहीं टूटता। हमारे प्यारे श्रोता दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे टांगसा श्रोताओं का समाचार। इससे पहले आप बने हुए थे आपके अपनी आरजे पूनम के साथ और अब आपके सफर में जुड़ चुके हैं आपके रेडियो साथी साजिद इकबाल। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको ले चलते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। दोस्तों, गुड इवनिंग ईटानगर में आज हम बात करेंगे शाम में टहलने के फायदे के बारे में। अगर आप सुबह नहीं टहल पा रहे हैं तो शाम को टहलना फायदेमंद होता है। यह हर उम्र के लोगों के लिए एक बहुत फायदेमंद है। आजकल बिजी शेड्यूल की वजह से सुबह सैर पर निकलना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में शाम को थोड़ा सा वक्त निकालकर इवनिंग वॉक पर जा सकते हैं। यह आपको फिट और हेल्दी रखने में मदद कर सकता है। हालांकि इवनिंग वॉक के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। जी होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में हम बात कर रहे हैं इवनिंग वॉक के बारे में। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक दोपहर के बाद एक्सरसाइज या वॉक करना बॉडी मसल्स के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। इस दौरान स्ट्रेस फ्री होकर आप वॉक को एंजॉय करते हैं। रात में डिनर के बाद वॉक करने से अच्छी नींद आती है, एनर्जी लेवल भी बेहतर रहता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और भूख कम लगती है, जिससे वजन तेजी से कम होता है। इवनिंग वॉक से वजन कम करना चाहते हैं तो उसका एक निश्चित समय फिक्स करें। शुरुआत में आधे घंटे शाम को टहलें और बाद में टाइम को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जब भी शाम की सैर पर निकले हैं तो शुरुआती कुछ मिनट्स अपनी स्पीड कम रखें। जब आप पर्याप्त वार्म अप के हो जाते हैं तो अपनी रफ्तार बढ़ा दें। तेज चलने से फैट जल्दी और तेजी से बर्न होगा और वजन कम होता है। दोस्तों, वजन कम करने के लिए वॉकिंग करते वक्त ही फिटनेस गोल तय कर लें, जैसे अपना वजन लें और हर हफ्ते चेक करें कि आपको कितना फायदा हो रहा है। इससे आपका मोटिवेशन बना रहता है। धीरे धीरे वॉकिंग का टाइम बढ़ाएं और आधे से एक घंटे करें। पहली बार यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बाद में आदत बन जाएगी और आपका वजन तेजी से कम होगा। शाम को जब भी टहलने निकलें, अगर थकान लगे तो तुरंत ब्रेक लें, कहीं बैठकर गहरी सांस लें और फिर पानी की 2-3 सिप पी लें। इससे इंजरी का रिस्क कम होता है और हेल्थ को भी नुकसान नहीं पहुंचता। दोस्तों, जब भी वॉक की शुरुआत करें तो सबसे पहला वार्म अप करें। सही जूते और आरामदायक ही कपड़े पहनें। इससे आप तेजी से और कंफर्टेबल तरीके से शाम की सैर पर निकल सकते हैं और तेजी से वजन कम कर सकते हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज मेघालय की राजधानी शिलांग में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 76वें संस्करण में शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों के मरने की आशंका है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र

नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरन, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने उपयोग है। उन्होंने कहा कि ये पेय पदार्थ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हैं और इनमें पीढ़ियों का अनुभव समाहित है। प्रधानमंत्री ने नेदरलैंड्स की अपनी हाल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नेदरलैंड्स सरकार ने चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई है, इससे दुनिया भर के तमिल समुदाय विशेष उत्साह है। उन्होंने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समृद्धि, ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोलाई में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज एक रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे। प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय का उल्लेख किया, जिसने पिछले वर्ष अपनी 50 वर्ष पूरे किए थे। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय नेटवर्क ने देश के शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने में सराहनीय भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचाने और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़े। एडमायरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। एडमायरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। इस अवसर पर निवर्तमान नौसेना प्रमुख एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि देश की नौसेना का नेतृत्व करना उनके लिए सम्मान की बात रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति के बीच भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता और पेशेवर अंदाज बना हुआ है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज मेघालय की राजधानी शिलोंग में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 76वें संस्करण में शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य साइकिल के माध्यम से युवाओं, एथलीटों और फिटनेस के प्रति उत्साही नागरिकों को एक साथ लाकर फिटनेस तथा स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना है। श्री मांडविया ने कहा कि भारत भर में 6000 से अधिक स्थानों पर साइकिलिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति और ईंधन की खपत कम करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के संदर्भ में कहा कि कम दूरी और दैनिक आवाजाही के लिए साइकिल के उपयोग से ऊर्जा संरक्षण में योगदान दिया जा सकता है। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने इस अवसर पर कहा कि शिलोंग में साइकिल की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। उन्होंने इसे फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रभावी उपाय बताया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों के मरने की आशंका है। इनमें छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक शामिल हैं। यह दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर हुई, जब एक कार खाई में गिर गई। दुर्घटना के बाद से वाहन में सवार सभी लोग लापता है और उनके बचने की संभावना कम है। पुलिस और प्रशासनिक दल खोज और बचाव अभियान में जुटे हैं। दुर्गम इलाके के कारण बचाव कार्य में देरी हो रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कल रात से जारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार मौसम में सुधार होने तक केदारनाथ यात्रा मार्ग पर किसी भी श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने अभी सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों, DDRF, SDRF, NDRF और अन्य संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। आपात स्थिति के लिए आपातकालीन संचालन केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर है 89587573355 और
8211

0: 1-800-283-26386। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। अभियान के शुभारंभ से पहले श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस अभियान में उनकी भागीदारी के लिए बात की है। श्री सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों से भी इस पहल में शामिल होने का अनुरोध किया है। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र, ICAR संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों के साथ वर्चुअल रूप से संवाद किया और जन भागीदारी के साथ अभियान को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज वर्षा हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ गरज चमक की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री रेडी पटरी दुकानदार आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने पूरे देश में छोटे उद्यमियों के कारोबार में मूल आधार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से रेडी पटरी वाले दुकानदार स्थानीय साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूलते थे। पीएम स्वनिधि योजना ने सफलतापूर्वक इस ऋण चक्र से उन्हें मुक्त प्रदान की है। यह योजना इन दुकानदारों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम में आसानी से और संस्थागत ऋण उपलब्ध कराती है। केंद्रीय मंत्री आज अगरतला में रेडी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के ऋण चेक और क्यूआर कोड युक्त क्रेडिट कार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनिक साहा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नवितरित क्यूआर क्रेडिट कार्ड को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है, जिससे ये दुकानदार दिन प्रतिदिन का लेन देन कर सकते हैं और इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इससे देश में वित्तीय समावेशन में तेजी आएगी। इस क्रेडिट कार्ड प्रणाली के अंतर्गत दुकानदार सुबह अपने दायरे में धन निकाल सकते हैं और शाम को जमा करा सकते हैं। इस प्रक्रिया में 2 माह तक कोई ब्याज नहीं देना होगा। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार ने इस कल्याणकारी योजना को दिसंबर 2030 तक दिया है। अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के लॉन्गव्यू शहर में पिछले मंगलवार को एक रासायनिक टैंक में विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अभी तक 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पूरे सप्ताह खोज और बचाव अभियान जारी रहा, जिसमें बचाव दल ने संयंत्र के अंदर से मलबा हटाया और आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस बीच खबरों में कहा गया है कि विस्फोट से हुआ प्रदूषण पास की कोलंबिया नदी तक पहुंच गया है। हालांकि लॉन्गव्यू शहर की वायु गुणवत्ता या पेयजल आपूर्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सूचना नहीं मिली है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में अमरीकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पैट हैरिगन के साथ बातचीत की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय प्रिया बादू। Prime Minister Narendra Modi said that the government is continuously making efforts to preserve priceless heritage sites in India. He informed about an important discovery made in Malhar, Chhattisgarh under the Gyan Bharatam Abhiyan. Addressing the nation in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani today, Mr. Modi said that 3 rare copper plates have been found there related to Maharishi Bal Arjun of the Pandu Vanshi dynasty of the 6th to 7th centuries. The Prime Minister also mentioned his recent visit to the Netherlands, where in a special ceremony, ancient copper plates from the Chola period were returned to India. Mr. Modi said people are sharing joy and expressing pride, and the Tamil community around the world is also particularly enthusiastic about this. Prime Minister Modi has urged the people of the country to take utmost care during the prevailing hot weather and follow the guidelines issued by various government departments in this regard. The Prime Minister also talked about Girija Amma, who is a teacher in Nagarkoil, Tamil Nadu, and runs close to 15 schools. He said, inspired by Mann Ki Baat, she pledged to contribute to the cause of soldiers in the country. Chief of Defence Staff Lieutenant General N.S. Raja Subramani today said that innovation in thought and action would drive the development of military capabilities. Addressing the media after assuming charge as the country's new CDS, General Subramani said the armed forces have consistently demonstrated professionalism and operational decisiveness in safeguarding the nation's interest and remain committed to protecting India's sovereignty and territorial integrity. Earlier this morning, General Subramani was accorded a Guard of Honor at the South Block Lawns in New Delhi. He also laid a wreath at the National War Memorial. Admiral Krishna Swaminathan today assumed charge as the 27th Chief of the Naval Staff. He succeeds Admiral Dinesh K. Tripathi. Addressing the media after taking over command, Admiral Swaminathan said that the Indian Navy remains vigilant in safeguarding the nation's interest and is actively deployed in a regional security environment that continues to be challenging, complex, unpredictable and uncertain. West Bengal Governor Mr. R. N. Ravi has said the open India-Bangladesh border is endangering national security. The Chicken Neck Corridor, which connects the northeast to the rest of the country, needs to be fortified, he said. He said this while talking to media after arriving at Baghdogra to attend Narad Samman Samaroh at Siliguri today. He further added that a sensitive section of the India-Bangladesh border is posing a threat to national security due to years of unfenced security. Three persons lost their lives after a commercial building collapsed near Saket Metro Station in South Delhi last evening. According to AIIMS, a total of 11 victims were brought to the J. Prakash Narayan Apex Trauma Center for treatment. Of them, three were declared brought dead on arrival. Five people are undergoing treatment at the hospital, while three have been discharged after receiving treatment. Chief Minister of Delhi, Rekha Gupta, today visited the incident site at South Delhi and reviewed the ongoing relief and rescue operations. The government has refuted a fake message circulating on social media claiming that India Post is offering gifts or rewards under the Dark Seva Gifts scheme. The fact check unit of the Press Information Bureau said that the video is fake and clarified that India Post has no connection with any such Dark Seva gift offers, reward scheme or lucky draw. The India Meteorological Department has said that conditions are favorable for the further advance of the southwest monsoon into more parts of the southwest and southeast Arabian Sea, the Lakshadweep Islands and parts of Kerala and Tamil Nadu over the next 4 to 5 days. The IMD added that heavy rainfall is likely to prevail over Orissa, Nagaland, Mizoram, Manipur, Tripura and Lakshadweep until tomorrow. In badminton, India's men's double pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on the Indonesian duo of Muhammad Sohibul Fikri and Fazer Alfian in the final of the Singapore Open today. In IPL cricket, Gujarat Titans will be up against defending champions Royal Challengers Bangalore in the final of the 2026 season at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad today. The final match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Both teams are aiming for their second IPL title. Gujarat won the maiden crown in 2022, while RCB are looking to successfully defend the trophy they won last season. That is all in this news bulletin. Namaskar.
2: एवं अंग्रेजी में समाचार ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है. अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम.
3: आया आकाशवाणी ईटानगर चा थर्सडे रोमडोंग मंगशे नाम मेडिया हजे किनि यौ किनि सरोयां अमन्ने जेमबंगरो बंगाचु ने जेंतु मन्या Akarup ya yang jo yang jatung ma, mungtawi ma tungnya ku Prime Minister Narendra Modi cha मन की बात प्रोग्राम यचु रेडियो मा इंडिया खोनक न खापशे तुसे हिन बोरो

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पे। जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम की महफिल। शाम की महफिल जहाँ हर शाम होती है थोड़ी खास, थोड़ी मिठास और थोड़ी यादगार। दोस्तों मैं हूँ आपका आरजे साजिद और आज की शाम हम बिताएंगे कुछ प्यारी बातों और खूबसूरत लम्हों के साथ। दोस्तों शाम का समय हमेशा कुछ सोचने और याद करने का होता है। दिन की भागदौड़ खत्म होती है, हवा में ठंडक और सुकून आता है और यही समय है खुद के लिए, अपने दोस्तों और अपने प्यार के लिए। आज हम बात करेंगे उन छोटी छोटी खुशियों की जो जिंदगी को खास बनाती है, चाहे वो किसी की मुस्कान हो, पुरानी यादों का कोई पल हो या फिर चाय की प्याली के साथ कोई मीठी बात हो।

दोस्तों, शाम की महफिल सिर्फ बातों और यादों की नहीं होती, ये हमेशा आपके कहानियाँ के ऊपर होती है, आपका पसंदीदा नगमा होता है।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पे। दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत सिर्फ किसी शख्स से नहीं होती, कभी किसी एहसास से, किसी ख्वाब से, या फिर जिंदगी के उस खूबसूरत लम्हे से भी हो जाती है जो दिल हमेशा के लिए ठहर जाता है। दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पे और आप सुन रहे हैं शाम की महफिल। दोस्तों, इश्क जब अपनी हदों से आगे बढ़कर रूह को छूने लगे, जब उसमें कोई शिकवा, कोई शर्त और

कोई उम्मीद बाकी ना रहे तो वो इश्क इश्क नहीं इश्क सूफियाना बन जाता है। आज का ये नगमा उन्हीं जज्बातों को बयां करता है जहां मोहब्बत में सुकून भी है, तड़प भी है और एक खूबसूरत सी रूहानी कशिश भी।

दोस्तों, कभी कभी कोई आवाज, कोई धुन आपको उस जगह ले जाती है जहां सिर्फ प्यार और यादें मौजूद हों। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz पे, और आप सुन रहे हैं शाम की महफिल। मैं हूं आपका दोस्त साजिद इकबाल। आज की शाम थोड़ी रूहानी है दोस्तों, थोड़ी हसीन है, और उस लम्हे की तरह है जब दिल बस मुस्कुराता है और आंखें कुछ कहना चाहती है। जब बाहर मौसम सुहाना हो, हल्का भीगा और हल्का ठंडा हो। दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत इतनी गहरी होती है कि कोई शब्द उसके एहसास को बयान नहीं कर पाते, बस धड़कन सुनाई देती है और हर पल आपको किसी खूबसूरत याद में ले जाते हैं। आज का गीत भी कुछ ऐसा ही है। यह गीत आपको ले जाएगा उस खूबसूरत सफर पर जहां प्यार की मिठास हर अल्फाज में महसूस है। पेश है फिल्म जब हैरी मेट सेजल का बेहद खूबसूरत नगमा अंबर सरिया।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम की महफिल, ये आकाशवाणी ईटानगर करुण FM 103.1 MHz से। दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम स्पेशल हिंदी फिल्मी गीतों का।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी में आते नहीं, बस गुजर जाते हैं, लेकिन अपनी यादों की खुशबू हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 MHz पे कार्यक्रम शाम की महफिल में, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफर साजिद। दोस्तों, जिंदगी की किताब में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो हर पन्ने पर अपना असर छोड़ जाते हैं। उनकी बातें, उनकी मुस्कान और उनका बेफिक्र अंदाज। वक्त गुजर जाता है मगर वो यादें कभी पुरानी नहीं होती। आज का ये गीत दोस्ती, आजादी और उन खूबसूरत लम्हों की दास्तान है जिन्हें याद करके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। ये नगमा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं बल्कि खुलकर महसूस करना भी जरूरी है।

दिग्गज कॉमेडियन महमूद के बेटे हैं लकी अली। कभी गायक नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने शुरू से ही अभिनय में रुचि थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तकदीर ने उन्हें अभिनेता की बजाय बॉलीवुड का ऐसा गायक बनाया कि एक समय लोग उन्हें सोनू निगम और उदित नारायण से भी बेहतर मानने लगे थे।

दोस्तों, बॉलीवुड में एक दौर ऐसा भी आया था जब लकी अली की आवाज़ के लोग दीवाने हो गए थे। 2000 में आई ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है मैं, ना तुम जानो ना हम और एक पल का जीना जैसे गानों ने लकी अली को रातों रात मशहूर बना दिया। धीरे धीरे लकी अली की आवाज़ लोगों को बेहद पसंद आने लगी और एक वक्त लोग उन्हें उस दौर के मशहूर सिंगर सोनू निगम और उदित नारायण से बेस्ट मानने लगे हैं। लेकिन आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि लकी अली कभी सिंगर बनना नहीं चाहते थे। लकी का शुरू से ही एक्टिंग की ओर रुझान था। उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन जब वह बड़े हुए तो एक्टर की जगह किस्मत ने उन्हें

0: मशहूर गायक बना दिया। लकी अली का गोल्डन पीरियड 2000 से 2003 के बीच था, जो जिस दौरान वह अपने शिखर पर थे।
1: सुर में गाना सीखिए पादानी सा। पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 MHz पे। दोस्तों, आज के कलाकार में हम बात कर रहे हैं लकी अली के बारे में। दोस्तों, जिस दौरान वह अपने शिखर पर थे, तभी साल 2004 उनके जीवन और उनके करियर के लिए काल बनकर आया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2004 में टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने से लकी अली की अनबन हो गई और लकी एक जिद पर अड़ गए थे कि उनकी सिर्फ एक जिद ने उनके करियर को तबाह कर दिया। दरअसल टी सीरीज ने लकी अली के एक एल्बम एकल कभी ऐसा लगता है को बंद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने केवल एक गीतकार समीर को श्रेय देने पर आपत्ति जताई थी, जबकि इसमें कई योगदानकर्ता काम कर रहे थे। तभी उन्होंने सभी के लिए इसका क्रेडिट देने के बारे में जोर दिया और लेबल ने के तौर पर इस असहमति के कारण एल्बम को वापस ले लिया गया। हालांकि लकी अली ने अपने करियर की इस लड़ाई के लिए सीधे तौर पर कभी भी भूषण कुमार का नाम नहीं लिया, लेकिन यह विवाद स्पष्ट रूप से भूषण कुमार के नेतृत्व वाली टी सीरीज पर केंद्रित थी। फिर उसी साल लकी के पिता महमूद का भी निधन हो गया था, जिससे वह काफी टूट गए।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz से। दोस्तों अभी से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे निशी श्रोताओं का समाचार।

0: மில்லிங்கம் ஆல் வால்யூம் ஆகாஷ்வாணி இட்டநகருக்கு அருண் எஃப்எம் 103.1 மெகாஹெர்ட்ஸ் சோகலா மீடியம் வேவ் 444.4 மீட்டர் கலா 675 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் ஒரு சோக நிஷியாகம் கமோத இரப்துக்கன் தன்பு முல்லிங்கம் ஹும்ருதன অতিশব্দ তাপাতাইন নিশিপুয়াম হকক তাপাতাইন সিম গব সুরিম গ নিন উরিল দেন ইয়ামি লাজিলা মুই গ সি সি চাপাগ হ গৌতম বেতাম নম সেত পোদ সোল গ লোলি চমুম তে লোকিন আল গ দো ইয়াল গ উইম গ কন মোদ গ নিশিপুয়াম নুল দেন তাবায়াম গা কম হোগ তাপাতাইন সিম গ নিশিপুই সি সোলো প্রাইম মিনিস্টার তুপ নরেন্দ্র মোদি গদা গতি নিয়ম পোল বরহি গ মন কি বাত রেডিও বন হো পুই গোলে লিবি গাম আপসো দুগ পোল হাত কু হোগ আব সোগ ওগ আবিন গ মো সো মুলিং গাম হেঙ্গ আব কাগ দোনিয়া তে কাহল হোগ দুগ দো বাং আম কার চুমিয়া গন ডিপার্টমেন্ট হে দুগ পুই দগো লা পব জিলিন হি কাম তাল সুনিয়া তে কাহল গোতম তাম জোল মুই গো ইউ মাদাম নেদারল্যান্ড গদা গাল কলি নাম পাগ হো রু গোতম বানে বিগাম বুলি গদা দো কুম গোল উল গদা গাম কোল চোলা ডাইনাস্টি দোই খোগ কপার প্লেট সে দোন বম জিলিন জিল পাকুহল হোগ সো কপার প্লেট সাম কাই কাম চোলা রাজা গ হাকাম লা আতর তোরলে দোগ নামমলা সাউথ ইস্ট এশিয়ান গদা তুলু লগব আলবো নিন ওরম বৈমিন সুনামম কাপা পাত কুহল হোগ লগা প্রাইম মিনিস্টার তামিলনাডু গ নাগরকোয়েল গ গিরিজা আম্মা টিচার আকব সিল আলি লে আঙ্গো স্কুল সাম কাল বনিয়েল দোগ বম গোপা বন গৌতম গুম মন কি বাত বন সাম কাল এই গো আল মু পাল গদা সোগ চেতুর দো তুরল দো গাবো সোলজার্স তুলুঙম সকা কই স্যান হল হোগ মু গ কো তুলুঙম কম আল লোহ চিরম তিঙ্ক বারকিন বারকিন বপ কুম গদল সোলজার্স তুলুঙম সকা কাম দম নিরব গ জিপা কুন হল পুয়ে বেপাদ சோலோ இண்டியன் நேவல் க 27th நேவல் சிப் அக்கவ தூப் அட்மிரல் கிருஷ்ண சுவாமிநாதன் முஜ்கன் குவாஹல் முயாம் அட்மிரல் தினஸ் கே திரிபாட்டி கோகவ ஹூலிஜிக்னு குவாஹல் ஹோக தூப் கிருஷ்ண பொனம் கரு நே டிதால் மீடியா தூலுங்கம் கோரு பண்ண பிகம் இண்டியன் நேவிங் கதா அலப் சீக்குர்கவ் லோஹியம் யுமா கர்மா ஜப் சேத்துர் தோத்துர் அல்சாவ பொனம் நில் தோது ஜிதன் ஹல் ஹோக லுஹி பும் தி ஹச் அசி ஹா குஜாகம் புல பீமா ஜாவ பொனம் நில் தோதன் ஹல் ஹோக இண்டியன் நேவிங் அப்போசோக நித நிதிபோ டெக்னாலஜி லோக কাম কাল তালে বনি নিগল গদাং আম গত সো আতরিয়ান বো আকব নিলে দম দ বনাম নিদুল দ দুদন হলকাম গোলে জিগনুক বাহল পুয়ে বেপাদ নাবার্ড রিজনাল অফিস ইটানগর গ জেনারেল ম্যানেজার কাম অফিসার ইনচার্জ তুপ এস ভি রঙ্গরাও মৌল্য ইটানগর গ লোক ভবন হো স্টেট সোক গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল রিটায়ার্ড কে টি পটনায়ক নন করেল দোকুম গো দোগ স্টেট সোক নাম্পিন উড়ু হো রঙ নাম পতুন মে সোল বোন ইদুল দো নিয়া বো হদাম হরাব সিরসোপ সিম দবলা সকাজি নাম নাম পাগো হো গোতম তমজ গন কুবাহল হো গা আগাম ইতু কাম তাল গভর্নর রঙ্গো রঙ্গো মনিয়া বো হদাম স্মল স্কেল এন্টারপ্রাইজ গম কটেজ ইলা ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ গম হো গা আজ ওলে চুমলে তেরমলা বো হদম লা রুলার এন্টারপ্রাইজ হদম মোদ মোদম ডিপার্টমেন্ট তম সকা কাজ সনম মম কাজ তে কাহল গোল জগনুক বাহল হোগ লগা হাম তাতল তুপ রাও কাম এ বো হল লোর ল নাম্পিন উর আসে হা বো হদম ম লোহেম সকা বো নম নিকেল জিত দো জিতাই কোন হল গোতম তম জগনুক বাহল পুয়ে বেপাদ ডিপুটি চিফ মিনিস্টার তুপ চৌনা মেন মৌলি রোয়িং সিয়াং জোন তু গব দীন দয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান 2026 গব দোলিম দিক আল হো দোবম লাইল ম সোশ্যাল মিডিয়া হো পোস্ট গৌতম বন সো ট্রেনিং বন সি বন নিয়া বো নি তুলু গ ম জেঞ্জম মদর মমদব লেকিন গব ইউনাইট লাইল বন নিদব হোগ আসে হা বোম সকা মিলা মমদব নি গ কুনা মহল হোগ লগা পণ্ডিত দীন দয়াল গ নিয়া কো তুলু গ আকিন গ আকিন স্ব হল মুজ লগ লগ অন্ত দিয়া গ প হো গ দ গ লাইল গ দাগ আলব সিকুর গব রোলু গ আলব সিকুর গব বন কাম কান আলব নিত কো বনি নাম মহল হোগ লগ লগা ডিপুটি চিফ মিনিস্টার গ দিবাং বেলি লাল ওয়ার দিবাং বেলি ডিস্ট্রিক্ট উরি লো নিয়া রোলু গ আলব বনিল দো দু নিয়ান বো হদম রু আক কেজ গন কো বাহল পুয়ে বিপাদ তান বো হদ নুলা আকাশবাণী ইটানগর গ অরুণ এফ এম সোগ নিসু পুয়াম তাল দো দো মোল আল খোনসা গ নেহরু স্টেডিয়াম হো অরুণাচল প্রদেশ স্টেট ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসেস এপিএসটি সুলুঙ লোঞ্জ দিন গ গোল্ডেন জুবলি সোদ হো জুবলি আমিন গব হন তিরাব ডিস্ট্রিক্ট হেলথ ডিপার্টমেন্ট হোগ ডিব্রুগড় গ ব্রাইট ভিজন অ্যানি তুলুঙ মেঘা হেলথ মেলা গ বন গো নি গন কো বাহল হোগ সোগ হেলথ কেয়ার গ বন সোগ নিয়ে লু পিলা লে গোব সকা পানিয়া গন কো বাহল সোগ মেঘা হেলথ মেলা সো টিউবার ক্লোসিস গ স্ক্রিনিং হাইবিচিয়াস গ এক্সরে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এনসিডি গ স্ক্রিনিং দাই মেডিসিন হোগ ফ্রি আই স্ক্রিনিং ক্যাম্প গ বন নিয়া গকনুম হল হোগ লগাব আনি স্ক্রিনিং রিজাল্ট সম কালাইল লিগলা চামকন গো নিয়ম দানিয়ে চশমা কাদির বরুব জিজগন কুবাহল পুয়ে বিপাদ Moil Alki Panyo District Government Higher Secondary School Yajali Ho, Beej Utsabi 2026 Ga Bona Milim Gan Kubahal. So Ga Bona Nixo, Seeds of Hope Help Gamlet Tapula, Amli Mili Chirma Malongam, Alab Hochum Chumda, District Udu Ho, Muli Rolu Gany Ahim, School Yemim, Nishila Apatani, the Purhidam Hoga, Nampin Hoga Youth Clubs Hidam, Frontline Ecological Stewards Gub, Malinam Makojig Nukwahal. Hoglag Lagab, MS Swaminathan Research Foundation, MSSS. SSR ga chairperson Dr. Somya Swaminathan Kambulaga MSSRF Stulunga Kui Panyo District ga Krisi Vigyan Kendra Logob Alabila Perba Hurubu Bonam Nibum Abum Taikun Halgam Ninjignapa Puhuri Nam Nituba Kolig Amli Milichir Mulo Hochum Chum Kilichanam News Ajam Potava Helen Jill Gatam Chem Dukub Kamish Taikun Halkam Gotam Tam Ninjignapa Halpuye Vipado Arunachal Pradesh ke Bharat Scouts and Guides ngala State Scouts and Guide Fellowship nga lekin go bon nibum bana Mol Al Ramakrishna Mission Hospital lam saka ke legal bon goni agnyag nukwa so go bon sam Arunachal Pradesh Bharat Scouts and Guides ke State Training Commissioner Guides Kempi Pakam ga kagtag uri lo nile bula hospital lik children ward sam male ward sam female ward sam maternity ward sam hoga emergency ward ho admit til donya bohidam dast se bal horjgan ko bahal Hoga soga subunia com, a sehakam kala sakamin sanamsi scouts and guide ga, perb gamle nitu jaka hal hog lagab, Ramakrishna Mission Hospital ga secretary to Swami Bedaswara Nandakam, Buligabon yinam anamam pal, kulum kol hanam gamnia com, sakamins gadal, hub mujdola buliglog of don kahal humlipa elijinuk bahal puyebe pado. Solo Ahmedabad ga Narendra Modi Stadium ho Indian Premier League Cricket ga Final Soka Mins ko ho Gujarat Titans OU Champion Don bo Royal Challengers Bengaluru logo kajasuyum 7:30 modam sotai kun hal hoga soga team any soga OU 2022 any ho Gujarat nga champion akab sipa hoga munyi Royal Challengers nga sil dotba hoga sinyi any champion suit ko hal aljab soya soka mins namamula kajkapa tai ko hal puye vipado sim ganisi puye hatiku
1: जी दोस्तों अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का समाचार ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम वुमेन एंड फैमिली वेलफेयर का
2: मूल के ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर में श्रीम गे आर्यम से हवालो कमिंग गे आर्यम
3: प्रिय श्रोताओं को नमस्कार स्वागतम और शुभ संध्या ये ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर है मैं हूं आजाद तपाक आज के इस कार्यक्रम के होस्ट और आप सभी के दोस्त आज के इस कार्यक्रम के चर्चा का विषय है प्रसवोत्तर अवसाद यानी पोस्टपार्टम डिप्रेशन पोस्टपार्टम यानी एक शिशु को जन्म देने के बाद जो वक्त होता है उसे पोस्टपार्टम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया भर में विश्वभर में कई सारी महिलाओं को होती है हिंदुस्तान में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के मुताबिक पता चला है कि हिंदुस्तान में 22% मदर्स को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है दुख की बात यह है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कम चर्चा है जिसके बारे में लोग कम जानकारी रखते हैं आज के इस कार्यक्रम में हम कार्यक्रम के चलते ये कोशिश करेंगे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सके इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है कोश रिंजो जी जो कि पीएचडी रिसर्च स्कॉलर है इन द डिपार्टमेंट साइकोलॉजी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से और मैम आपा जो कि अल अरुणाचल प्रदेश साइकोलॉजी एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी भी है मैम आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है
4: जी बहुत बहुत धन्यवाद
3: सबसे पहले मैम जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं ये बीमारी तो एक बहुत ही ज्यादा होने वाली बीमारी है जो नेम आउट होती है विश्व में पर कम लोगों को पता होता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन नाम की बीमारी भी है करके। तो सबसे पहले आपसे हम अनुरोध करेंगे कि हमारे जो श्रोता है आप उसे ये बताएं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है और इससे जुड़े हुए समस्याएं क्या
4: हैं। जिसको हम बेहतर ये एक ऐसी बीमारी है जो वर्ल्ड के अराउंड में 20% लोगों को होती है, जो नए माँ या पिता होते हैं जिनको अराउंड लोगों को 20% से भी ज्यादा लोगों को होती है। जिसका मतलब ये है कि 1 से 5 माँ जो नए माँ होंगे उनमें से एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक्सपीरियंस होगा और 1 से लेकर 7 पिताओं के बीच पोस्टमार्टम डिप्रेशन
2: इंतजार
4: पोस्टमार्टम के बारे में हम जानते हैं। अगर हमारी जिंदगी में दोनों को भी बच्चे का पैदा होना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, मतलब हमारे लाइफ की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आता है जब घाचा पारे एक बच्चा पैदा होता है। तो ये बच्चा पैदा होना, दो इंसान का पेरेंट बनना, माता पिता बनना, ये बहुत खुशी का मौका भी होता है, लेकिन फिर बहुत बार ये थकाने वाला और चिंताजनक
3: और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़
4: जाती है, एक्सपेक्टेशन का बढ़ना और उसके बाद में जो आपको बहुत सारे बच्चे से जो है बहुत सारी चिंताएं होती है। मैक्सिमम केसेस में हमको ज्यादा होती है मौका कोई महिला है जो नई माता है डिफरेंट डिफरेंट तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक मैं अगर आपको सिम्टम्स के बारे में बताऊं तो उसमें होंगे जो हमारे भावना है कभी बहुत ज्यादा खुश होंगे कभी बहुत ज्यादा दुखी होंगे और ऐसे माए होती है जो जिनको बहुत रोना आता है। यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नई माँ बहुत खुश होंगे अपने बच्चे के पैदा होने पर, बट कुछ माओं को ऐसे महसूस होता है कि वो अपने बच्चे के पैदा होने पर खुशी महसूस नहीं कर पाते, उनको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिया है जिनके लिए वो नहीं उनमें उनको बहुत थकान महसूस होता है, वो बच्चे के साथ जुड़ नहीं पाते, वो बच्चे को ध्यान नहीं जता पाते, ना कर पाने की वजह से उनको बहुत बहुत दोषी वाला फीलिंग भी आता है, उनको लगता है कि एक माँ होके मैं कैसे ऐसे नहीं कर सकती हूँ, एक माँ होके कैसे अपने बच्चे को प्यार नहीं कर सकती हूँ, एक माँ होके मैं कैसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाती, तो इन सब का गिल्ट और फिर उस गिल्ट के चलते उनको बहुत बहुत बार क्या होता है कि उनको कुछ करने का मन नहीं करता, वो उनको बहुत थकान महसूस होता है, शारीरिक थकान, उनको मेंटली भी बहुत थकान महसूस होता है,
3: मानसिक और आपकी जो शारीरिक तौर पे अस्वस्थ रहते हैं।
4: एग्जैक्टली मानसिक और शारीरिक तौर पे अस्वस्थ अनहेल्दी रहते हैं, जो फ्यूचर होता है बहुत चिंता एंग्जाइटी बोलते हैं उनको, हम उनको बहुत चिंता सताती है आगे क्या होगा, वो बच्चे को कैसे संभालेंगे, अब उसके बाद में अभी बच्चा पैदा हो तो गया, अभी उसके बाद में आगे क्या होगा उसका, उनको चिंता बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है और स्पेशली यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि उनके जो बच्चे से लगाव नहीं हो पाना क्योंकि हमारा समाज ऐसा है जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि माँ होने के नाते वो बच्चे के सबसे करीब वाले सबसे अटैच्ड फोन तो हम सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस और अपने ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस रहते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते तो उनको बहुत बुरा लगता है। इसी के चलते मैं और एक टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आप सबको, एक होता है अभी हम लोग बात करें पोस्टमार्टम के बारे में, मतलब कि बच्चे के पैदा हो जाने के बाद, बट यहाँ पे हम लोग हमें देखने को मिलता है पेरीपार्टम करते हैं, पेरीपार्टम डिप्रेशन जिसको पेरीपार्टम मतलब ये प्रेगनेंसी के दौरान पोस्टमार्टम यूजुअली प्रेगनेंसी के बच्चे पैदा होने के 2 या 4 हफ्तों के अंतर्गत हमको ये देखने को मिलता है, पर पेरीपार्टम डिप्रेशन ये प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद में भी कंटिन्यू होते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि प्रेजेंट समय में हम लोग
5: पोस्टमार्टम डिप्रेशन एवरी टाइम स्कूल वीक हो पार्टी हो रूप दो वाला फेवरेट
3: डिप्रेशन जो कितना टीचर और पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने के बाद आमतौर पर वो कितने समय तक
5: फर्स्ट मेगा जॉब
4: पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये है 20 से 22 22% जो वर्ल्ड के पॉपुलेशन है जिसकी जो माता पिता बनते हैं जो पेरेंट्स बनते हैं उनको ये महसूस होता है उनको ये बीमारी होती है। उनमें से मैं अगर नंबर के तौर पर बताऊँ तो एक 5 के बीच में एक माँ को होता है। और अगर आप एक बात इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे माँ को नहीं पिताओं को भी
5: जो गाया
4: ज्यादा
5: पिता
4: के केस में अगर हम देखा जाए तो
5: 3 बजे तक हम रेडियो के बीच में एक पिता को यूज नहीं पोस्ट 5 बजे हम अब रेडियो बंद
4: दो या 4 हफ्ते के बाद शुरू होता है यूजुअली लास्ट करता है। अगर इसको ट्रीटमेंट ना किया जाए पोस्टमार्टम डिप्रेशन ना किया जाए तो इसका बिना ट्रीटमेंट का ठीक होने का संभावना बहुत कम रहता है। अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो आगे जाके ऑलमोस्ट बच्चे के पैदा होने के 3 साल तक 3 साल बाद भी इसका एक्सपीरियंस आगे चलते रहता है। और इसके चलते क्या होता है कि जो आगे की जो प्रेगनेंसी होने का जो माता
5: पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो रहा है उसको
4: पर्सनल लाइफ में भी ये डिप्रेशन जो बीमारी होती है वो आगे
5: सिंगल डांस भेजा कम हो गली में
4: इंटेंसिटी उसका
5: गली में आन बोलो काल दो अच्छा तेनो कम ना सुन दो और नाम वाला जो मार बताए तो आरो माने उसका पता तो जाकर मैंने जानना चाहिए कि
3: पोस्टमार्टम डिप्रेशन
5: और अगर
3: कितने
4: शुरू कर पोस्टमार्टम डिप्रेशन हम लोग इसको पोस्टमार्टम मूड डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसके अंदर हम 3 तरह के डिसऑर्डर्स देखते हैं। सबसे पहला हम कहते हैं उसको पोस्टमार्टम ब्लूज या तो फिर इसको हम बेबी ब्लूज बोलते हैं।
3: बेबी ब्लूज
4: सो ये पोस्टमार्टम ब्लूज या फिर बेबी ब्लूज ये फेयरली बहुत कॉमन है। मतलब कि ये 50 से लेकर 70% महिलाओं को जो माँ बनती है उनको ये एक्सपीरियंस होता है। ये कब होता है? ये बच्चे के पैदा होने के तुरंत होता है। इसमें हम लोग क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ये काफी हमारे पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन है उसके सिमिलर होता है। तो उसमें पहले आपको देखने मिलेगा उसका भावनाओं में चेंजेस। कभी बहुत खुश होंगे फिर अचानक से बहुत दुखी हो जाएंगे, फिर कभी खुश होते होते फिर बहुत दुखी हो जाएंगे, फिर रोना शुरू करेगी, उनको बहुत रोना आता है, उनको खुद को पता नहीं होगा कि किस बात पे उनको रोना आ रहा है बट उनको रोना आता है और वो बहुत देरी तक बहुत जोर से बहुत दुख होके वो बहुत काफी देर तक रो भी सकते हैं इस केस में। एंड उनको बहुत जल्दी जल्दी वो

0: बहुत जल्दी चिढ़ जाती हैं एंड उनको ऐसे लगता है कि जो भी उनको करना है वो बहुत उनको ओवरवेलमिंग लगता है. जैसे उनको कुछ छोटा सा टास्क करना रहेगा लेकिन उनको ऐसे लगेगा कि बच्चे के जैसे कि डायपर को चेंज करना होगा,
1: हाँ जी,
0: लेकिन फिर उनको लगेगा कि वो कर ही नहीं पा रहे. उनके लिए छोटा छोटा काम भी बहुत
1: वो
0: बड़ा
1: मुश्किल
0: लगने,
1: हो
0: हाँ
1: जाते
0: बहुत
1: हैं।
0: मुश्किल हो जाते हैं, बड़ा लगने लगता है. वो अपना ध्यान नहीं लगा पाते हैं कोई चीज में. वो बच्चे को देख रही होंगी बट उनका ध्यान कहीं और
1: हाँ
0: होगा
1: जी,
0: एंड उनको खाने पीने में बहुत दिक्कत होती है एंड स्पेशली यहाँ पे उनकी नींद में बहुत प्रभाव होता है. वो बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं सो पाती जिसके वजह से वो अपने बच्चे पे ध्यान भी नहीं दे पाती.
1: हाँ जी,
0: लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पोस्टपार्टम ब्लूज बच्चे के पैदा होने के 2 हफ्ते के बाद में, यूजुअली 1 या 2 दिन में शुरू हो जाती है.
1: जी
0: फिर उसके बाद में ये हालांकि बहुत अच्छा वाला एक्सपीरियंस तो नहीं है,
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: नापसंद वाला अनुभव है,
1: बिल्कुल,
0: फिर भी लेकिन ये बिना ट्रीटमेंट के धीरे धीरे टाइम के साथ में ये खत्म हो जाता है. ये
1: बस अंतर ये रहता है कि उसमें ज्यादा वक्त लग जाता है।
0: नहीं, पोस्टपार्टम ब्लू में ये वक्त के साथ में ठीक हो जाता है बिना
1: अच्छा,
0: ट्रीटमेंट के.
1: बिना ट्रीटमेंट के
0: बिना
1: भी,
0: ट्रीटमेंट के ये वक्त के साथ में ठीक हो जाता है.
1: तो मतलब बेबी ब्लू जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन से उनसे थोड़ा
0: थोड़ा सा
1: सा।
0: हल्का सा अगर
1: हाँ
0: आप
1: जी,
0: इंटेंसिटी के बारे में बात करें, अगर हम उनके लेवल ऑफ जो सिम्टम्स है उसका इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो वो कम रहता है.
1: हाँ जी,
0: तो उसके बाद आते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज के बाद आता है हमारा पोस्टपार्टम डिप्रेशन. तो
1: ओके,
0: जैसे कि मैंने बताया पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये पोस्टपार्टम ब्लू के कंपेयर में ज्यादा सीरियस कंडीशन
1: हाँ
0: है,
1: जी,
0: लेकिन सीरियस कंडीशन होते हुए भी ये बहुत कॉमन कंडीशन है. बहुत लोगों को होता है लेकिन बहुत लोग अवेयर भी नहीं होते कि उनको ये
1: बिल्कुल
0: सिम्टम्स हो
1: बिल्कुल,
0: रहा है. क्यों अवेयरनेस नहीं होता है कि उनको ये सिम्टम नहीं सिम्टम

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। दोस्तों प्रस्तुत है कार्यक्रम अपना गीत।
1: नमस्कार, अरुण FM 103.1 MHz पर प्रस्तुत है कार्यक्रम अपना गीत। अपने राज्य के गीतों के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी गैर अतः।

अपना गीत कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना इदू भाषा में, हमारा लेजेंडरी सिंगर स्वर्गीय बुद्धि लिंगी की आवाज में। ये गीत एक ड्रिंकर का कन्फेशन था। कहते हैं कि दारू ना पीने की खुद से चाहे जितना भी वादा कर ले, पर ये लत ऐसी है, ये आदत ऐसी है कि पी ही लेता है। तो श्रोता, कन्फेशन से भरा इस गीत के बाद चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हम डेडिकेट करना चाहेंगे दुनिया की हर माताओं को। प्यारी माताओं, बस आप खुश रहें और लंबे वक्त तक हमारे साथ, आपके अपनों के साथ रहें।

ये गालो गीत था जिसे मिस किम्ब कम्ब और उनके भाइयों ने मिलकर अपनी माँ के लिए बनाया था। गीत लिखा था गतो ओरी ने, कंपोज किया मीबी न्योदु तारिन ने और आवाज थी मिस पंगम लोम्ब की।

Chau, chau, mai am bat cortul.

बान्यम पोंगलाहम और पेवो पोंगलाहम की आवाज में आप सुन रहे थे वांचो गीत। हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ज पर और कार्यक्रम है अपना गीत। तो आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं आदि भाषा में आलो लिबांग की आवाज में, जिसमें गायक एक लड़की की घमंड को तोड़ने की कोशिश में कहते हैं कि जवानी भी एक फूल की तरह है, एक बार खिलकर खत्म हो जाती है। खूबसूरत तुम ही नहीं बल्कि दुनिया में कई और है जो तुम्हारी तरह खूबसूरत है।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें हम लेकर आते हैं अरुणाचल प्रदेश के गीत संगीत हर शुक्रवार से शनिवार रात 8 बजे। जी हाँ, आप ही का अपना चैनल अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो चलिए, वक्त हो चला है अपना गीत कार्यक्रम के आज के इस अंक के समापन का। जाते जाते छोड़ जाती हूँ आप सभी श्रोताओं के लिए ये निशी गीत बिंग्या तब और तोको यालम की आवाज में। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज का और प्रस्तुत है भूले बिसरे गीत। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपका अपना आरजे साचित। आज हम ले आए हैं एक खास सेगमेंट भूले बिसरे गीत, जहां ये वो नगमात सुनाते हैं जो कभी हमारी रूह की धड़कन बने। और अब भूले बिसरे गीत में यादों के उस शबनमी सफर पर हम चलेंगे, जहां हर सुर हर लफ्ज आपको कहीं पुराने जज्बातों में ले जाएगा।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फूले बिसरे गीत। मोहब्बत की दुनिया भी कितनी अजीब होती है, कभी एक मुलाकात उम्र भर की याद बन जाती है, तो कभी एक नजर दिल का मुकद्दर बदल देती है। आज भूले बिसरे गीत में हम आपको ले चल रहे हैं उन सुनहरे दौर की उस फिजा में, जहां अल्फाज में नजाकत थी, धुनों में रूहानियत थी और मोहब्बत में एक पाकीज़गी। फिल्म आरजू से है पेश है बेहद खूबसूरत नगमा जब इश्क कहीं हो जाता है। इस गीत को अपनी दिलकश आवाज से सजाया था मुबारक बेगम और आशा भोसले ने, जबकि इसके बोल लिखे थे हसरत जयपुरी साहब ने और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने।

दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं देते हैं बल्कि दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं। मोहब्बत जब अल्फाज तलाशती है तो कभी शेर बन जाती है तो कभी गीत। और इस नगमे में इश्क की वह कशिश, मासूमियत और वही तड़प महसूस होती है।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, मोहब्बत की दुनिया में कभी इजहार अल्फाज से होता है तो कभी निगाहें सारी दास्तां कह देती है, और जब शायरी संगीत और एहसास एक साथ मिल जाए तो जन्म लेता है ऐसा नगमा जो बरसों भी दिलों में महकते हैं। आज की भूले बिसरे सेगमेंट में ये आरजू फिल्म का प्यारा नगमा ए नरगिसे मस्ताना, यह वो नगमा है जिसे महबूब की तारीफ भी है, उसकी अदाओं का जिक्र भी, और मोहब्बत की वही पुरकशिश रवानी भी जो सुनने वाला एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। इस गीत को अपनी जादुई आवाज से सजाया था सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी ने, बोल थे हसरत जयपुरी के, और धुन बनाई थी मशहूर संगीतकार शंकर जयकिशन ने। कहते हैं ना, तेरी नजरों का असर कुछ यूं दिल पर छा गया, जो बात लफ्ज ना कह पाए वो एहसास बता गया।

दोस्तों, मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज़ है। कभी हमें हंसाती है, कभी चुपके से दिल में चोट कर जाती है। और जब प्यार में थोड़ी नाराज़गी शामिल हो जाए तो हर अल्फाज में वही मीठी तड़प झलकती है। आज के सेगमेंट में पेश है दिलकश नगमा, अजी रूठ कर अब कहाँ चाहिएगा। इस गीत में मोहब्बत की हल्की नाराज़गी भी है, थोड़ी शरारत भी, और वही मासूमियत है जो हर दिल को छू जाती है। दोस्तों, शायर कहता है, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, मुस्कुराकर मेरा हाथ थाम लीजिएगा। आइए दोस्तों, सुनते हैं प्यारा सा नगमा।

दोस्तों, ये थे आज के भूले बिसरे गीत जो हमेशा दिल को एक नई ताजगी देते हैं। ये पुराने नगमे कभी पुराने नहीं होते, ये हमेशा दिल के करीब रहते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज के इस प्रसारण सभा में प्रसारित कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ हैं प्रसारण निष्पादक तीतांगजांग तथा तकनीकी अभियंता पीबी द्वेरी। दोस्तों, अब से थोड़ी देर में आप आनंद ले पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से एफएम गोल्ड पर प्रसारित सभी कार्यक्रमों को। तब तक के लिए आप अपने रेडियो दोस्त साजिद इकबाल को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब खैर।

0: Is Delhi. Please stand by for our next program. This is All India Radio. We now bring you the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio.
1: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत है आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगुंज.

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं रजनीश कुमार शर्मा
1: और मैं तपस्या,
0: आपका स्वागत करते हैं अनुगूंज कार्यक्रम की इस नूतन कड़ी में। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कला, संगीत और साहित्य जगत की स्वरांजलि, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं इस प्रसिद्ध अभिनेत्री को, जो अपना परिचय स्वयं दे रही हैं।
2: जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम नरगिस है, लेकिन मेरा एक और नाम भी है जो कि मेरी माँ ने मुझे दिया था। वो नाम है कनीज फातिमा। और एक और नाम भी है जो मुझे अपने पिताजी की तरफ से मिला है, और वो है तेजेश्वरी। इसलिए कि मेरे पिताजी पंजाब के एक हिंदू थे और मेरी माँ उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान औरत, और मैं बंगाल में पैदा हुई, लेकिन अपने घर बार और बाल बच्चों के साथ महाराष्ट्र में रहती हूँ।
1: सन 1940 से लेकर 1960 के दशक तक नरगिस ने कई सफल फिल्मों में काम किया। बरसात, अंदाज, आवारा, दीदार, श्री 420 और चोरी चोरी इनकी बहुचर्चित फिल्में रहीं।
0: महबूब खान द्वारा निर्मित 1957 की फिल्म मदर इंडिया में नरगिस जी के अभिनय की बहुत प्रशंसा हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। ये फिल्म ऑस्कर के लिए भी नामित हुई। आइए सुनते हैं मदर इंडिया फिल्म से नरगिस का एक संवाद।
3: देवी यहाँ से नहीं जाएगी।
4: खबरदार राधा, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना राधा, छोड़ दो।
3: देवी ने तुम्हें धन दिया और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है। मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है, पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन। स्थान पर बैठकर तमाशा देखना आसान, पर खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मैं देवी को बताऊंगी कि एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती, कहाँ तक गिर सकती, कहाँ तक गिर सकती। देवी शक्ति नहीं दे सकती, देवी तो लाज ले लो, लाज ले लो देवी। मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती, मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी।
1: श्रोताओं, नरगिस पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें सन 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं नरगिस से उनके फिल्मी जीवन के आरंभ के बारे में।
2: मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह यह भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहां जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है।
0: फिल्म तकदीर में नरगिस ने पहली बार मुख्य अभिनेत्री का चरित्र निभाया। इस फिल्म के सह कलाकारों को याद करते हुए नरगिस कहती हैं,
2: जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था, मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहां तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया।
1: पुरानी फिल्मों की तुलना नई फिल्मों से करते हुए नरगिस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं।
0: श्रोताओं, पुरानी फिल्मों के कलाकार अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया करते थे। अभिनेत्री नरगिस भी ऐसी ही कलाकार थी।
2: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदलकर एक कोठे पर गई। वहां आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए।
1: सन 1968 की फिल्म रात और दिन उनकी अंतिम फिल्म थी। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैंसर रोग से पीड़ित होने के कारण 3 मई 1981 को नरगिस का निधन हो गया। सन 1982 में इस महान अभिनेत्री की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।
0: श्रोताओ, कार्यक्रम में आगे हम सुनवाएंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात गायक पंडित डीवी पलुस्कर का गायन। तो अनुगूंज के इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इस विराम के बाद।

0: एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्रोताओं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उच्च कोटि के गायक पंडित डीवी पलुस्कर का जन्म 28 मई 1921 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। उन्हें एक विलक्षण बालक के तौर पर जाना जाता था। पलुस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 14 वर्ष की आयु में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया।
1: श्रोताओं, भारतीय संगीत में गायन की कई शैलियां हैं, जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमा, त्रिवट, चतुरंग आदि। चतुरंग शैली लुप्त होती जा रही है। आइए सुनते हैं पलुस्कर जी के स्वर में, राग सिंधुरा में, चतुरंग।

फिल्म बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय जुगलबंदी के लिए भी पलुस्कर को जाना जाता है। आइए सुनते हैं उस जुगलबंदी का एक अंश।

पंडित डीवी पलुस्कर शुद्ध शास्त्रीय संगीत गायक के अतिरिक्त एक महान भजन गायक भी थे। आइए सुनते हैं पंडित जी का गाया लोकप्रिय भजन ठुमक चलत राम चंद्र।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनेंगे संस्कृत के प्रकांड विद्वान और हिंदी के लोकप्रिय कवि जानकी वल्लभ शास्त्री की कुछ रचनाएं इस अल्प विराम के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मन की बात।

श्रोताओ, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को बिहार के गया जिले में हुआ था। वे छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक भी थे। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, बाद में महाकवि निराला से प्रेरणा पाकर हिंदी में सृजन किया। शास्त्री जी गीतकार भी रहे हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा उनके गीतों

0: बांसुरी।
1: सन 40 के दशक में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने कई छंदबद्ध काव्य कथाएं लिखी जो गाथा नामक संग्रह में संकलित हैं। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य नाटकों की रचना की और राधा जैसा श्रेष्ठ महाकाव्य रचा। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शास्त्री जी का एक और गीत।
0: बोल कहीं बोल।

संस्कृति के उपकरण बदल गए, बदल गए पहले कारण करण। जीवन के बाने में आने वाला मरण, जीवन के बाने में आने वाला मरण।

उपकरण बदल गए पहले कारण करण। जीवन के बाने में आने वाला मरण,

0: श्रोताओं, हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, anugoonj@gmail.com।
1: जी हाँ, anugoonj@gmail.com। तो अब हमें यानी रजनीश कुमार शर्मा को
0: और तपस्या को
1: दीजिए विदा।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम अनुगूंज की आज की कड़ी के शोधकर्ता थे रंजन गुप्ता, राकेश बिहारी और डॉक्टर श्याम शर्मा। गीत रचना थी राजेश राज की और गायन स्वर था जितेंद्र सिंह का। आलेख और निर्माण था आशुतोष कुमार का और निर्देशक थे डॉक्टर संतोष नाहर।
1: अभी आप आकाशवाणी संग्रहालय द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे।
2: You are listening to the program Anugunj, based on the archival inputs of All India Radio. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के साजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निःशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के जारी प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स की हाल की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह के दौरान चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा है कि वे अपने सेवा प्रदाता के ऑन मार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार में के गया में पहुंचे थे। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रित में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. The Prime Minister also highlighted the efforts of Akash Gupta from Basti in Uttar Pradesh, who along with his friends launched a campaign to clean the Manorama River, helping restore its cleanliness and promoting environmental awareness in the community. Mr. Modi further shared the story of Balakrishna Iyer, a retired teacher from Goa who worked to address water scarcity by contributing to the laying of water pipelines. He also praised educator Girija Amma of Tamil Nadu for her contribution to the welfare of soldiers. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes in the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi.
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग-अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार इन साथियों ने अलग-अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।
2: The Central Board of Secondary Education, CBSE, has said an expert team of cybersecurity professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of Class 12 answer sheets. In a social media post, the board said it is closely monitoring vulnerabilities in the portal of its service provider that were recently flagged in the public domain. It said vulnerabilities have been identified and contained, and a thorough review is being carried out to rule out any other exploitable weaknesses. In Maharashtra, the ruling Mahayuti Alliance today finalized its seat-sharing formula for the upcoming Legislative Council elections to 17 seats. Under the agreement, the BJP will contest 11 seats, Shiv Sena 4 seats, and the Nationalist Congress Party, NCP, 2 seats. The opposition Mahavikas Agadi had earlier announced its allocation for 15 of the 17 seats, with Congress contesting 8 seats, Shiv Sena UBT 4, and the Sharad Pawar-led NCP 3 seats. Discussions on the remaining Nashik and Nanded seats are still underway. Tomorrow is the last day for filing of nomination papers for the elections. In Himachal Pradesh, the Bharatiya Janata Party has won 3 out of the 4 municipal corporations in the civic body elections. The counting of votes was held today while polling took place on the 17th of this month. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Aung Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a 5-day visit to India. Moving on to sports, in the high-voltage IPL title clash, Gujarat Titans have set a target of 156 runs for defending champions Royal Challengers Bengaluru at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. In reply, Royal Challengers Bengaluru were 62 for nil in 4.2 overs when reports last came in. Put into bat, Gujarat Titans posted 155 for 8 in their 20 overs, with Washington Sundar scoring an unbeaten 50 off 37 balls. For Bengaluru, Rasik Salam Dar picked up 3 wickets, while Bhubaneswar Kumar and Josh Hazelwood claimed 2 wickets each. Earlier, Bengaluru won the toss and opted to field. Both teams are aiming for their second IPL title. Gujarat won their maiden title in 2022, while Royal Challengers Bengaluru are looking to successfully defend the trophy they won last season. And that is the end of this news bulletin.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ में मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन के साथ वार्ता करेंगे। म्यांमार में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच झड़प, सैकड़ों प्रशंसक गिरफ्तार। और बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमएसए अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार में गया जी पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। राष्ट्रपति के रूप में श्री लाइन की यह पहली यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई की यात्रा पर रहेंगे और उद्योग तथा व्यापार से संबंधित संवाद करेंगे। वे दर्शनीय स्थल भी देखने जाएंगे। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। नामकाम शहर के काओंग टप गांव में दोपहर को हुए इस विस्फोट में तकरीबन 70 लोग घायल हुए हैं। ये क्षेत्र चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये इलाका सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी द्वारा नियंत्रित है और ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। म्यांमार से बड़े पैमाने पर हुए पलायन के लगभग एक दशक बाद बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए चल रही सहायता एक नाजुक दौर में प्रवेश कर चुकी है, जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने नाजुक चरण बताया है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय अनुदान में कमी आई है, शिविरों की स्थिति बिगड़ती जा रही है और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
4: 2026 की संयुक्त सहायता योजना प्रस्तुत करते हुए संयुक्त राष्ट्र और उसके मानवीय सहायता साझेदारों ने लगभग 15 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों और मेजबान समुदायों के सदस्यों की सहायता के लिए 71 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता राशि की अपील की है। बांग्लादेश में आयोग के प्रतिनिधि इवो फ्रीजन ने कहा कि म्यांमार में निरंतर अस्थिरता और शिविरों की बिगड़ती स्थिति ने मानवीय स्थिति को और भी नाजुक बना दिया है। 13 लाख राज्यविहीन रोहिंग्या अब भी बांग्लादेश में रह रहे हैं और उनके म्यांमार लौटने की संभावनाएं बहुत कम है। आयोग के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष केवल 30% शरणार्थी परिवारों ने नकद आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से आय अर्जित की, जबकि 35% परिवारों के पास आय का कोई स्रोत नहीं था और वे पूरी तरह से मानवीय सहायता पर निर्भर थे। समाचार कक्ष से विश्व दर्पण के लिए मैं आकर्षिता सिंह।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स कल नई दिल्ली में दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्री संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे। इसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने, साझा सैन्य अभियान चलाने तथा विकास और उत्पादन कार्य मिलकर करने के अवसरों सहित रक्षा उद्योग में सहयोग पर चर्चा होगी। मंत्रालय के अनुसार ये संवाद द्विपक्षीय रक्षा संबंध मजबूत करने, राजनीतिक सहयोग बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा रक्षा और सुरक्षा सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है।

0: फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। राजधानी पेरिस में परिवहन सेवाएं प्रभावित होने के कारण स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने बताया कि 8 लोगों की हालत गंभीर है। हिंसा के आरोप में 780 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पेरिस रिंग रोड पर एक व्यक्ति का शव मिला जिसे दंगाइयों ने रात भर अवरुद्ध करने की कोशिश की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह भी किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। फॉक्स न्यूज से बातचीत में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने ये दावा भी किया कि ईरान इस शर्त पर सहमत हो गया है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीकी सैन्य अभियानों के कारण ईरान की स्थिति कमजोर हुई है। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। यूक्रेन ने कल रात भर रूसी ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले किए। उसने रूस के उन दावों का खंडन किया कि किसी यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाया। इस बीच यूक्रेन ने भी रूस के उन दावों का खंडन किया है कि उसके किसी ड्रोन ने ज़ापोरिज़्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कहा है कि कांगो में इबोला वायरस से संक्रमित 5 मरीज ठीक हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी शहर बुनिया की यात्रा पर हैं। उन्होंने बुनिया में एक नए इबोला उपचार केंद्र का उद्घाटन किया। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों में प्रकोप से जुड़े 906 संदिग्ध मामले और 223 संदिग्ध मौतें दर्ज की गयी। पड़ोसी देश युगांडा में अधिकारियों ने 9 मामलों और 1 मौत की पुष्टि की है। इससे पहले डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संगठन ने चेतावनी दी थी कि स्वास्थ्य सेवा समन्वय में सुधार और अतिरिक्त सहायता के बावजूद वायरस तेजी से फैल रहा है। संगठन ने परीक्षणों के तत्काल विस्तार, स्वास्थ्य कर्मियों की त्वरित तैनाती और आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की निर्बाध उपलब्धता पर बल दिया। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
0: चीन के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आज एक अवैध खनन स्थल के ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई और 1 अन्य घायल हो गया। यह घटना युन्नान प्रांत के बाइवो गांव में हुई। खबरों के अनुसार जब यह हादसा हुआ तब 6 लोग अंदर थे। बचाव दल ने सभी लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। हालांकि बाद में 5 घायल लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति की हालत स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय अधिकारियों ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। चीन में मई माह में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर स्थिर रही। सूचकांक अप्रैल के 50.3 से गिरकर 50 पर आ गया, जो वृद्धि न होने का संकेतक है। ये स्थिति नई खरीदारी में कमी, उत्पादन में गिरावट, मुद्रा बाजार में मंदी, घरेलू मांग में कमी और निर्यात में गिरावट के कारण आई है। वैश्विक व्यापार में गतिरोध से भी स्थिति जटिल हुई है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशियाई जोड़ी को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में खेल मंत्री ने कहा कि इस जीत के साथ 2 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने इसे भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक जीत बताया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑनलाइन के साथ वार्ता करेंगे। म्यांमार में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच झड़प, सैकड़ों प्रशंसक गिरफ्तार। और बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: morning. This is Akashvani. I am Reshma Tiwari with the world news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. More than 45 people killed in a blast at mining explosive storage site in Myanmar. Hundreds of football fans arrested in France after violent clashes with police after victory of Paris Saint-Germain against Arsenal in Champions League. And in badminton, Indian pair of Sattvic Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty clinched men's doubles title of Singapore Open. Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President U Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar president arrived at Gaya in Bihar yesterday on a five-day visit to India. In Myanmar, more than 45 people were killed in a blast at a building in the northeastern part of the country that was reportedly storing explosives used for mining. According to local media reports, around 70 others were injured in the explosion, which occurred around noon in the village of Kangtup in Namkham Township. The area, located about 3 kilometers south of the Chinese border, is controlled by the Tang National Liberation Army, an ethnic armed group engaged in conflict with Myanmar's central government. A rescue worker who reached the site said that 46 bodies, including those of 6 children, were recovered by evening and taken for cremation. Rescue operation is underway. Defence Minister Rajnath Singh and Australian Deputy Prime Minister and Minister of Defence Richard Marles will co-chair the second India-Australia Defence Ministers Dialogue in New Delhi tomorrow. The Ministry of Defence said that during the dialogue, discussions will focus on strengthening defence and security cooperation, enhancing military interoperability and industry collaboration, including co-development and co-production opportunities. The meeting is expected to further strengthen bilateral defence relations, enhance strategic trust and cooperation, promote stability and security in the Indo-Pacific region, and identify new areas of collaborations in defence and security. US President Donald Trump said the United States is close to reaching a nuclear agreement with Iran, but warned that military action remains an open option if negotiations fail. In an interview, Trump said his administration's priority is ensuring that Iran never obtains a nuclear weapon. Trump claimed Iran had agreed to language barring it from developing or acquiring a nuclear weapon. He said negotiators had expanded the terms under discussion after he raised concerns about Iran potentially obtaining a weapon from another source. President Trump called the talks tough, but said progress is being made. He explained that he prefers to reach a peaceful agreement, but he warned that the United States will still take action if its demands are not met. In US, the death toll from a chemical tank rupture in Washington state has risen to 11 after recovery crews located the bodies of all 9 missing people. 2 deaths were confirmed immediately following the incident on Tuesday when a tank containing white liquor used in paper pulp production imploded at a Nippon Dynawave packaging facility. Search and recovery operations continued throughout the week, with crews clearing debris inside the facility and using drones to survey the surrounding area. Ukraine launched overnight drone strikes targeting Russian energy infrastructure, while Kyiv denied Russian claims that a Ukrainian drone hit the Kremlin-controlled Zaporizhia nuclear power plant. We have a report.
3: Governor of Russia's Rostov region, Yuri Slicer, said drone debris triggered a fire at a fuel storage facility and damaged civilian infrastructure in Saratov. Kyiv has intensified attacks on Russia's oil and gas sector, arguing it helps fight